0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: राम राम दो सलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल बिंदास बातें होती हैं। ये जो बातें हम कर पा रहे होते हैं, एक संदेश दूसरी जगह हम पहुंचा पा रहे होते हैं, अखबारों के जरिए खबरों को हम पढ़ पा रहे होते हैं, टीवी के जरिए न्यूज को हम देख पा रहे होते हैं, हमारे आसपास क्या खास हो रहा है, ये सब हो रहा है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से ये संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहे होते हैं। तो इस चौथे स्तंभ को, लोकतंत्र के स्तंभ को हम दिल से सलाम करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आज इसका मैं जिक्र कर रहा हूं तो दो बड़ी खूबसूरत हस्ती हमारे साथ जुड़ रही हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहते हैं इसी विषय पर, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने इनवाइट किया है भारत न्यूज 360 टीवी से आप हैं, और इनका जो परिचय मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हैं स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली NCR और इंडियन नेशनल जर्नलिस्ट फेडरेशन से आप जुड़े हुए हैं एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी। तो सर सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद गगन जी।
2: आप परिचय में अगर कहीं कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहूंगा, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं।
3: नहीं, बिल्कुल आप सही है, आपने परिचय सुना।
2: अनन्या जी आपको देख रही थी, मुझे भी देख रही थी। चलिए दूसरी हस्ती हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका भी मैं परिचय आपको देना चाहूंगा। मेरे साथ हैं आप भारत न्यूज 360 टीवी से, आप हैं ब्यूरो चीफ एंड ऑपरेशन हेड अनन्या ठाकुर, आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है।
4: शुक्रिया गगन जी।
2: लिसनर्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हरफन मौला हैं, आप पेशे से एक एंकर भी हैं, बहुत सारी भूमिकाओं के साथ अपनी जिम्मेदारियों को अपने चैनल के साथ आप लोग आगे लेकर जा रहे हैं। तो सर आप पहले मुझे बताइए कि सुनो शारदा के इस प्रांगण में रेडियो FM में आकर मुझसे मिलकर आपको कैसा लग रहा है?
3: बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बेहतरीन,
2: थैंक यू।
3: बहुत अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत,
2: ये तो आपका प्यार है और जरा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, हम तो एक ही बिरादरी के हो गए ना, वैसे तो बिरादरी हम तीनों की एक ही है, लेकिन एंकर कुछ तारीफ तो कर ही सकते
4: हैं। अपनापन आता है जब आप अपनी बिरादरी से मिलते हैं, और आप डेफिनेटली, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
2: चलिए बहुत खूबसूरत, यानी कि औपचारिकताओं से निकलकर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास क्या खास है, यानी कि पत्रकारिता के बारे में हम बात करेंगे, वर्तमान पत्रकारिता और पुराने समय की जो एक अंतर है, हम क्या महसूस करते हैं उसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे आजकल जो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ माइक लोग लेकर निकल जाते हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ABCD उनको पता नहीं है, बहुत सारी बातें डिटेल में होंगी हमारे दो खास मेहमानों से। तो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समुदाय की बातें करें, अपनी बातें करें, हमारे आसपास क्या खास हो रहा है उन बातों को हम जन जन तक पहुंचाएं। जी हां, आज एक विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, वर्तमान पत्रकारिता के बारे में जानेंगे और प्राचीन समय में इसकी क्या रूपरेखा थी उसके बारे में जानने समझने के लिए मैंने स्टूडियो में दो खास मेहमान को इनवाइट किया है। भारत न्यूज 360 टीवी से आप है मेरे साथ एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। सवाल मेरा ये है और मैं समझना आपसे चाहूंगा कि आप क्या महसूस करते हैं अगर हम देखें कि आज की जो जर्नलिज्म है जिसको हम आम भाषा में कहते हैं पत्रकारिता और पुराने समय की पत्रकारिता में क्या आप अंतर महसूस करते हैं?
1: गगन जी, ये जो आपने प्रश्न किया ये बहुत ही खूबसूरत भी है और बड़ा विवादित प्रश्न है, क्योंकि जैसे हम पत्रकारिता की बात करें कि उसको आपको पहले जाना पड़ेगा संविधान में, आप उसमें देखेंगे कि पत्रकार और पत्रकारिता को इस तरीके से रखा गया कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहते हुए अपनी बातों को कह सकें, अपनी बातों को रख सकें। शायद यही एक रीज़न है कि संविधान में या उस पूरे के पूरे तंत्र में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं रखा गया कि क्या एक पत्रकार की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या जो है किस तरीके से पत्रकारिता, मतलब कि आप अगर किसी चीज़ को किसी खबर को पहुंचा पा रहे हैं, कह पा रहे हैं तो आप और रेगुलर आप काम कर रहे हैं तो आप ऐसे पत्रकार हैं
0: जी।
1: अब पहले की पत्रकारिता की बात करें तो बहुत कठिनाइयाँ होती थी, चूँकि रिसोर्स नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। और आज की पत्रकारिता की बात करेंगे तो आज हम AI के युग में हैं, चैट GPT से लेकर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके लिए रिसर्च करना, बहुत सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी, इसी चीज़ों ने जो है बहुत सारे चैलेंजेस को भी जन्म दिया। अब हम बात करें कि ऑथेंटिकेशन किसको कहते हैं, ऑथेंटिक पत्रकार किसको कहते हैं।
0: मैं इसी बात पर आता, बिल्कुल इसी बात को मैं आपसे जानना समझना चाह रहा था कि किस तरीके से ईमानदारी के साथ पहले लोग काम किया करते थे, आज वो चीज़ कहीं ना कहीं गुम होती हुई नजर आ रही है और जिसकी वजह से वो सम्मान, आप यकीन मानिए आप मेरी बात से इत्तफाक रखेंगे, कहीं ना कहीं हम खोते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी फिल्मों में हम देखा करते थे एक पत्रकार जब जाया करता था तो बड़े बड़े अधिकारी अपनी सीट छोड़ दिया करते थे उस पत्रकार के लिए, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ अपनी कलम के जरिए लोगों को जगाने का काम करता था। आज चंद रुपयों के लिए हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ चीजें गलत हो रही हैं हमारे समाज में। तो इसके बारे में जो आपने कहा ऑथेंटिसिटी के बारे में, ईमानदारी के बारे में, इसके बारे में मैं आपसे जरूर जानूंगा। मैं अनन्या आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, सवाल मेरा वही है, आप क्या सोचती हैं, आपका नजरिया क्या है?
2: सर जैसे कि बताया संदीप जी ने कि पहले काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं थे, उतने साधन उपलब्ध नहीं थे हमारे पास में, तो किसी भी एक स्टोरी करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता था, प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। बस आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी, हम आसानी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, रिसर्च कर पाते हैं, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें इजिली अवेलेबल भी हो जाती हैं। तो अभी स्किल्स तो हमें डेफिनेटली है कि AI के जरिए हमें मेहनत कम करनी पड़ रही है, बट हाँ चैलेंजेस अभी भी वही है कि अगर आपको ईमानदारी के साथ में पत्रकारिता करनी है तो उस पे आपको बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है।
0: राइट, जो बात आपने मुझे बताई सर ने भी वही बात की, अगर मैं इसका समराइज करूं, निष्कर्ष निकालूं, तो जो पैरामीटर्स हैं, जो ऑथेंटिसिटी है, जो एक ईमानदारी है, उसका एक मापदंड क्या है, वो क्या क्या नियम कायदे कानून है जिसके तहत एक पत्रकार आगे बढ़ सकता है, अपने समाज में जन चेतना ला सकता है, और अगर वो चीजें नहीं है तो निश्चित तौर पर उसके कलम से निकले हुए शब्द बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: विषय पर हम बात कर रहे हैं। विषय बड़े खूबसूरत है और 360 टीवी के आप एडिटर इन चीफ, ये हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में आप हैं संदीप तिवारी जी और अनन्या ठाकुर जो कि ऑपरेशन हेड हैं इसी चैनल में। तो मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: तो सर मैं आपको रोका था उस वक्त क्योंकि मैं उस सवाल का जवाब अब आपसे जानना चाह रहा था। ऑथेंटिसिटी की आप बात कर रहे थे, अनन्या उसके मापदंडों के बारे में बात कर रहे थे, तो पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे।
2: देखिए गगन जी, अगर हम पत्रकार और पत्रकारिता की बात करें तो मेजर अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या है
0: जी,
2: पत्रकार और पत्रकारिता जो है जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि समाज में या जो है तंत्र में गलत हो रहा हो तो उस पर क्वेश्चन करें, सही हो रहा हो तो उसकी रिपोर्टिंग करें, लेकिन उसको हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना कंपलसरी होता है। और रही ऑथेंटिसिटी की बात, तो उसके बहुत सारे जो है मापदंड हैं और बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम बात करें कि अगर गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज करती है, तो अगर गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज, ध्यान सुनिएगा गगन जी, अगर गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज करती है तो क्या गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं? जहां से जिस पेपर में या जिस सर्टिफिकेट से आपको पत्रकार, मुझे अगर पत्रकार कहने का सर्टिफिकेशन अगर सरकार देगी तो सरकार में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ या कैसे बोल सकता हूँ? इसीलिए संविधान में ये कोई प्रावधान डाला ही नहीं गया। आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर होती है संविधान में, कोई भी चीज़ दी गई तो उसके मिसयूजेस भी बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है कि समय समय पर उसका अमेंडमेंट करना चाहिए, अमेंडमेंट करके इस चीज़ को। अब जैसे मैं बड़ी बात बताऊं कि डिजिटल पॉलिसी की बात करें हम
0: जी,
2: पत्रकारों की पत्रकारिता के या पत्रकार की डिजिटल पॉलिसी है, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए हुए थे उसी टाइम पर उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की। और ये बड़े कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि आज इतने सालों बाद भी डिजिटल मीडिया का आज तक कोई भी रूपरेखा या कोई भी चीज ऑथेंटिकेशन आज तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई
0: जी। ठीक है,
2: आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्या प्रोसेस है, क्या है, आज तक कोई डिफाइन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को त्वरिता से काम करने की जरूरत है।
0: बहुत अच्छे,
2: और रही बात ईमानदारी की सर, तो ये तो एक प्रत्येक विषय मतलब व्यक्ति विशेष की वो है कि उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। रही बात बेईमानी की, तो बेईमान पत्रकार पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, लेकिन उससे पूरी की पूरी पत्रकार बिरादरी को नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। आपको सही चीज़ों पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आज की अगर हम बात करें गगन जी, एक बहुत चीज़ देखने को मिलती है कि हम कहीं ना कहीं पत्रकार ना होकर, पत्रकारिता ना होकर, हम कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट करने लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज की डेट में क्या हो गई है, आप कुछ आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं और बोल के उसको हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी बाइट लेके चले जा रहे हैं, जबकि हमारा कर्तव्य क्या बनता था कि आप बोल रहे हैं तो उसमें मैं क्वेश्चनिंग करूं, काउंटर क्वेश्चन करूं, मैं पूछूंगा ऐसा क्यों हुआ जी, हम क्यों नहीं पूछते, हम पूछते हैं कि इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब जो आपने कह दिया उसी को हमने दोबारा एक अपने कैमरे पर ले जाकर हमने दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, ये मेरे व्यक्तिगत वो है कि उस पे हमें जो है काउंटर करना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है जब जब क्वेश्चंस होते हैं और वो कहीं नेगेटिव नहीं होता। आप क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि वो आपका जो भी क्वेश्चन है वो सत्ता पे बैठे शिखर पे जो लोग हैं उन तक पहुंचे, और कहीं कुछ कमियां है सिस्टम में तो उसको ठीक की जाए।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और इस बात को मैं जानना समझना चाह रहा था, हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी समझना चाह रहे थे कि आपका इस पर क्या टेक है, आप क्या कहना चाहते हैं। आपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस की बातें की हैं जिसके बारे में मैं आपसे जरूर जानूंगा, और साथ ही साथ अनन्या आप क्या इस पर कहना चाहती हैं, आपसे भी जो आपने मापदंड का जिक्र किया वो बातें मैं आपसे जरूर करूंगा, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। Don't go anywhere. Stay tuned on your Surushada 90.8 FM with me, मेरे यानी गगन के साथ। आज दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र के महारत हासिल हैं, और आप भारत न्यूज 360 टीवी चैनल से आप आते हैं। आप हैं संदीप तिवारी जी जो कि एडिटर इन चीफ हैं, और साथ ही साथ हैं अनन्या ठाकुर। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे रनिंग गगन के साथ बिंदास। सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें हो रही है और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अनन्या जी जो कि भारत न्यूज 360 टीवी से आप आती हैं, ऑपरेशन हेड आप करती हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी। तो एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: अनन्या। मैं आपसे जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि जो आप बात कर रहे थे कुछ मापदंडों के बारे में बात कर रहे थे, कुछ पैरामीटर्स के बारे में आप बात कर रहे थे पत्रकारिता के बारे में, तो सर ने जो बातें रखी हैं उसके अलावा अगर आप कुछ एड ऑन करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं तो आप प्लीज हमें बताइए।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि आज के युवाओं में आप देख रहे हैं कि जोश तो बहुत देखने को मिलता है, वो पत्रकारिता करना भी चाहते हैं सही तरीके से। तो अगर अभी करंट के आपको कुछ केसेस याद हो पत्रकारों पे, उत्तराखंड के राजू हो गए या छत्तीसगढ़ के हो गए, तो उन्होंने ईमानदारी से पत्रकारिता करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी की और भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर भी किया। तो एंड ऑफ लास्ट आपको उस पर न्यूज भी मिली होगी
0: जी,
1: कि कहीं ना कहीं उनका मर्डर हुआ, एक्सीडेंटल दिखाया गया। तो ये चीजें काफी इफेक्ट भी करती हैं हमारे यूथ को, खासकर मेंटली डिस्टर्बेंस करती हैं। तो अगर वो चाहते भी हैं ईमानदार पत्रकारिता करना, तो कहीं ना कहीं वो जो अभी आज का टाइम चल रहा है कि जो अभी सिस्टम में चल रहा है आप उसी को दिखाइए, तो कहीं ना कहीं यूथ इससे घबरा भी रहा है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, जब तक आप स्टेबल नहीं है तब तक आप खुल के कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। आप जो सामने वाला बोल रहा है आपको सुनना है, वही आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप स्वच्छंद पत्रकारिता करते हैं तो उसके लिए आपको या तो बड़े लेवल पे आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, आपके बैक बोन्स बहुत मजबूत होने चाहिए, देन उसके बाद आप किसी स्टैंड के लिए आप खड़े हो सकते हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं आज के यूथ के लिए, खासकर क्योंकि वो बहुत जेंजीज का टाइम चल रहा है, तो जेंजीज को एक पेशेंस लेवल भी नहीं है और वो बहुत कुछ करना भी चाहते हैं जो उसके साथ में। जैसे अभी आपने देखा जेंजीज ने एक नेपाल में क्रांति ला दी, तो
0: राइट
1: सेम चीज यहाँ पे देखने को।
0: मैं आपकी बात को समझ गया। अनन्या ने एक दूसरी तरफ इशारा हमें कर दिया है और वही वाली बात है कि पत्रकार जब आप हैं तो बातों में से बातें निकलेंगी ही। इन्होंने इशारा कर दिया कि जिस तरीके से उत्तराखंड का एक एग्जांपल इन्होंने हमारे सामने रखा, तो ऐसा क्यों होता है कि वो एक पत्रकार अकेला पड़ जाता है, उसकी आवाज को बुलंद नहीं किया जाता है, सब साथ मिलकर नहीं चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एकला चलो रे और उसके बाद वो चीजें ठंडे बस्ते में पड़ जाती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं डर का माहौल हो जाता है कि अगर मैं इस तरीके की पत्रकारिता करूंगा और बेबाक बोलूंगा, सच दिखाऊंगा, तो हो सकता है कि उसको डर रहेगा कि मेरे साथ नुकसान हो सकता है, उसे डर इस बात का भी रहेगा कि मेरे पीछे कोई है नहीं, यानी कि वो बिरादरी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पत्रकार बंधु। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से
2: गगन जी? ये तो होता है। देखिए, आप जब भी जो है रिपोर्टिंग करेंगे, स्पेशली जो है करप्शन के खिलाफ या क्राइम के खिलाफ, तो खतरा तो आप पे रहेगा सर
0: जी।
2: यही तो मैं कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में इस चीज़ की चेंजिंग्स होनी चाहिए। आप ये समझिए जो है कि आप जो ये पत्रकार या जो है जो मीडिया सेक्शन है वो एक सेटअप, बहुत महंगा सेटअप है, करना बहुत मुश्किल काम होता है
0: जी।
2: ये बहुत आसान काम नहीं होता। आप उसके एक्सपेंसेस को मीट आउट करना, अपनी टीम के एक्सपेंसेस को मीट आउट करना, तो कहीं ना कहीं जो है आप इसको किस तरीके से आप करेंगे। और दूसरी बात क्या होती है कि जैसे कुछ कंट्रीज में होता है कि एक फंड होता है जिससे जो है मीडिया हाउसेस जो चलते हैं वो उसको इंडिपेंडेंटली दिया जाता है। अभी क्या है कि जैसे एग्जांपल समझिए कि किसी भी मीडिया हाउसेस की बात करें, किसी स्पेसिफिक का नाम हम नहीं कहेंगे, किसी को भी नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि पावर के खिलाफ बोलना या कहना जो है। हाँ, लोग काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, सब कोई काम करते हैं, लेकिन देखिए जब भी आप कभी भी किसी क्रिमिनल का या किसी पे वर्किंग करेंगे तो वो अटैक करेगा आपके साथ, हो सकता है। तो ये देखिए एक क्रिमिनल माइंडसेट है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए पत्रकारिता करना जब आप इस फील्ड में आते हैं तो ये साथ में लेकर आते हैं। जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप ये सोच के जाते हैं कि आप क्राइम के क्रिमिनल के खिलाफ बोलेंगे तो आप ये कुछ करेंगे तो हो सकता है कि गोली आपके नाम पर हो। तो देखिए इसीलिए एक बात और बताऊंगा गगन जी, इसीलिए आपको एक अलग स्थान भी मिला है आप एज अ जर्नलिस्ट हैं तो आप जब खड़े होते हैं तो आपका एक अलग सम्मान होता है, एक अलग प्रेशर फील होता है, सिस्टम पे खड़े होते हैं, बोलते हैं, तो उस जगह को पाने के लिए आपको सर बस कीमत भी देनी पड़ती है, रिस्क भी उठाना पड़ता है। तो
0: आपकी बात बहुत सही बात आपने की है और सही एग्जांपल भी आपने दिया है कि चाहे वो मिलिट्री हो, पुलिस हो या किसी भी क्षेत्र में आप जब जा रहे हैं तो चुनौतियां तो आती हैं और इस तरीके की चुनौतियां भी आती हैं कि कभी कभी आपको जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ेगा
2: इस
0: तरीके से पास्ट में घटनाएं हुई हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि कभी कोई व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, उसके साथ जो उसके बिरादरी बंधु हैं कुछ चल पाते हैं, कुछ रुक जाते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं, सरकार की कुछ पॉलिसीज हैं वो भी कहीं ना कहीं छूटती हुई नजर आती है, तो मैं उस चीज़ को अगर आपसे समझूं तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप?
2: देखिए सर, ऐसा होता है कि जैसा कभी भी ऐसा हुआ है तो आपने अगर देखा होगा तो वहाँ के जो लोकल संगठन हैं वो सब संगठन कुछ ना कुछ इस पे काम करते हैं। जो पत्रकारों के संगठन होते हैं वो उस पे कार्रवाई करने की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, और ये लगभग देखा गया है कि अगर पत्रकारों पे कभी अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो उस पे जो है एक्शन होता है फिर
0: जी।
2: ये बात की बात है उसके जाने के बाद होता है, उनके जाने के बाद ये होता है। तो इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेकर कुछ दे चाहे नहीं दे, आप जो है पत्रकारों के प्रोटेक्शन में आप उस पर कुछ करें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर कि भाई आपको मतलब चाहे सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, वेपन्स प्रोवाइड कीजिए, जैसा भी कीजिए। और इससे देखिए बात वहीं आके फिर फंस जाएगी कि गवर्नमेंट कुछ करेगी तो सबके लिए करेगी, और सबके लिए करेगी तो पहली बात तो यही डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन एक्चुअल पत्रकार और कौन नहीं पत्रकार। अब गवर्नमेंट अगर एक्चुअल पत्रकार की कोई मापदंड लेकर आए तो यहीं से एक आवाज उठेगी कि आप अगर मुझे सर्टिफाइड करोगे तो आपके खिलाफ मैं बोलूं कैसे। तो ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, एक इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग।
0: कुछ लोग तो कैसे निकाले, प्राप्त पत्रकार तो होते ही हैं।
2: अब आप बताएं सर ना कि मान्यता प्राप्त, वर्ड सुनिए, मान्यता प्राप्त कौन मान्यता दे रहा है?
0: आई थिंक वही जो आप कह रहे हैं
2: गवर्नमेंट दे रहा है। तो सर एक बात बताइए कि अगर मान्यता गवर्नमेंट दे रही है, आपने सर आज तक देखा है कोई सरकारी अधिकारी अपने विभाग के बारे में गलत स्टेटमेंट दे रहा हो?
0: ये बात
2: कैसे दे देगा?
0: सही बात।
2: सैलरी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उसके खिलाफ वो कैसे बोल सकता है?
0: गवर्नमेंट मुलाजिम है वो।
2: तो अगर आप गवर्नमेंट, आप मुझे जो है मान्यता दे रहे हैं, मान्यता मीन्स कि आप मान्यता दे रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ कि नहीं हूँ, तो फिर अगर आपने मुझे मान्यता दे दी तो फिर आप पे मैं क्वेश्चन मार्क कैसे लगा सकता हूँ? और मेरा सबसे परम कर्तव्य यही है कि मैं आपके सही एंगल को दिखाऊं या ना दिखाऊं, लेकिन गलत एंगल को दिखाना बहुत जरूरी है, तभी उसमें चेंजेस आएंगे।
0: राइट, बहुत अच्छी बात आपने कही। सो लिसनर्स, कहने का आशय यही कि आप जब इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कमर कस कर आप आइए और अच्छा लिखिए, अच्छा बोलिए, और कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाइए, और निश्चित तौर पर सुनवाई होती है, बात निकलेगी तो दूर तलक जरूर जाती है, उसका असर भी होता है। वर्तमान समय में पत्रकारिता के जो चेहरे हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदलती हुई नजर आ रही है, ChatGPT हमारे सामने है, AI हमारे सामने है, नए नए लोग आ रहे हैं अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, कुछ इस तरीके के सवालों के जो दौर है वो जरूर हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे जरूर जानेंगे, समझेंगे कि क्या करें क्या ना करें इस समय। तो वक्त है अपन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक पर मैं बात कर रहा था अपने खास मेहमानों से कि बातचीत इतनी ज्यादा अच्छी हो रही है कि समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। स्टूडियो में खास मेहमान हैं, आप हैं भारत न्यूज 360 टीवी से एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी, और साथ ही साथ हैं अनन्या ठाकुर जो कि ब्यूरो चीफ और ऑपरेशन हेड है इसी चैनल से, यानी कि भारत न्यूज 360 टीवी से। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: बहुत बहुत
2: धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा विषय है, पत्रकारिता के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके सकारात्मक पहलू के बारे में। कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं वो भी हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि आपने ईमानदारी की बात की, आपने बात की कि कुछ एक मापदंड होना चाहिए कि कौन पत्रकार है या नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर जब अपने आप को पत्रकार कह रहा है उसको ABCD नहीं पता। आपने बहुत अरसा इस फील्ड में दिया है, नज़दीकी से काम किया, धरातल पर काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया है, लोगों को आप जानते हैं, समझते हैं, तब आप पत्रकार बने हैं। लेकिन लोगों की कैसे आत्मा गवारा करने को ये कह देती है कि मैं पत्रकार हूँ, जबकि उनको कुछ पता नहीं होता, और जिसकी वजह से हमने ये भी देखा है कि उनको वो सम्मान भी नहीं मिलता। सम्मान तो छोड़िए कि वो अक्सर समाज में पिटते हुए नजर आते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, और बाकी आप मुझे करेक्ट करेंगे क्या सही है क्या गलत है।
2: देखिए सर, मैंने आपको एक बात बताई कि सही और गलत ये दो लोग जो है या दो चीज़ें हर एक प्रोफेशन में हर एक जगह पाई जाती हैं। उसको सही करना जो

0: है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो सत्ता में बैठे हैं लोग। अब हम बात करें जिसकी बात बार बार हो रही है, एक यूट्यूबर, और यूट्यूबर हैं वो मीडिया पर्सन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ उन सभी लोगों से, अब आपने ध्यान दिया होगा कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पॉलिटिकल गैदरिंग्स, बड़े अधिकारियों के उसमें देखिएगा तो मतलब डर्जन्स ऑफ माइक आईडीज लगी होती हैं
1: जी।
0: और जितनी ज़्यादा माइक आईडी का जमावड़ा होगा उतना बड़ा उसका मीडिया प्रेजेंस है। तो क्या उस समय चेक किया जाता है कि यूट्यूबर है कि नहीं है? आप चेक करते हैं, आप चेक नहीं करते। आप चेक तब करते हैं जब वो आपके खिलाफ बोलना स्टार्ट करता है। मैं जानना चाहता हूँ आप पहले क्यों नहीं चेक करते? आपको सिस्टम में हर चीज़ पता है ना, सिस्टम बना हुआ है ना। कोई जैसे सपोज कीजिए कोई व्यापार कर रहा है, वो अफीम या गांजा बेच रहा है, तो उसको मॉनिटरिंग करने का आपके पास सेल है ना
1: जी।
0: तो आपके पास सेल है ना कि कौन सही है कौन गलत है, तो आप पहले क्यों नहीं करते? जितने भी पत्रकारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है आप उसमें ध्यान दीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि वो आज से काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी मुझे आज तक ऐसा केस नहीं मिला कि जिसको ये पता हो, जिसमें ये लग रहा हो कि वो आज आया और दो दिन या चार दिन बाद उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर कोई आरोप लग गया। ये आपको पता चलेगा तो कई साल से काम कर रहा है, उस जिले में काम कर रहा है। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ सर, जो एक नॉर्मल तरीके से रखा गया था
1: जी।
0: ये रखा गया था कि आप जो है, जैसे सपोज कि मैं एडिटर इन चीफ हूँ, हम अपने यहाँ किसी रिपोर्टर को हायर करते हैं और रिपोर्टिंग करने के लिए देते हैं, तो हम एक DIO को लेटर देते हैं। DIO को लेटर देकर हम ये बताते हैं कि हमने आपके क्षेत्र में इस बंदे को एज अ रिपोर्टर रखा है, वो आपके सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वगैरह अटेंड करने के लिए अधिकारी हमारी तरफ से नॉमिनेट है और वो करेगा, और उसकी IDs वगैरह हम उसमें डाल देते हैं
1: जी।
0: इस तरीके से अच्छा, उसकी एक कॉपी उनके पास जाती है, एक DM के पास जाती है, एक पुलिस में जाती है
1: जी।
0: तो सर क्या आप उसकी वेरिफिकेशन करते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है।
1: बहुत अच्छी बात।
0: अगर हर एक चीजें टाइम से होने लगे तो मुझे लगता है कि बहुत चीज कंट्रोलिंग में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने वही एक बात कही कि बात वहीं आकर रुकेगी कि जब ये बात होगी कि आप क्या डिसाइड करेंगे कि ये पत्रकार है कि नहीं, क्या सिस्टम डिसाइड करेगा? और अगर सिस्टम डिसाइड करने लगा, मतलब गवर्नमेंट अगर डिसाइड करने लगी कि कौन पत्रकार है कौन नहीं है, तो एक बात बताइए, इसके मतलब कि गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठेगी कैसे? अगर आपने कहा कि ये पत्रकार है तो वो पत्रकार कैसे बोल देगा कि चीज़ गलत है या सही? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसमें काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, और जो पत्रकार बंधु हैं, जो सीनियर बंदे हैं, या जो है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पत्रकारों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं, उनको एक राउंड द टेबल बैठ के इस पर काम करने की ज़रूरत है। चूँकि कहीं ना कहीं पत्रकार और पत्रकारिता पर चोट तो है
1: जी। चूंकि ये बात को मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, इसको अगर मैं समराइज करूँ तो बात निकल कर ही सामने आ रही है कि निश्चित तौर पर हम बात कर रहे हैं या जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनके एक शब्द से, क्योंकि फॉलोअर्स हैं, लोग उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक गलत मैसेज जाता है जिसकी वजह से दिक्कतें
0: सर
1: में आ
0: जाती। सर पता कैसे होगा? मैंने आपसे एक बात कही ना कि आज की डेट में हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं जा रहे हैं और हम इवेंट शो कर रहे हैं, चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनसे बाइट ली जा रही है, आप क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं ना। क्योंकि सर जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे ना तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके विषय में बात करनी पड़ेगी, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा आपको, उसमें मेहनत लगेगी आपको, काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी एक बात आ जाती है कि अभी कुछ गाइडलाइंस वगैरह आई हुई हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन चीज़ों को नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्टिगेशन, जिस पर काफ़ी कुछ बीच में जो है इस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन भी हुआ है कि अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो आप लिखोगे क्या, आप बताओगे क्या? क्योंकि आप सही कहने के लिए आपको तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना। आपके पास कोई मैटर आता है तो आप इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते तो कैसे आप काम करोगे? फिर तो आप एज अ जर्नलिस्ट रहे ही नहीं ना, आप तो इवेंट मैनेजमेंट हो गए, इवेंट मैनेज कर रहे हैं। तो देर इज अ लॉन्ग डिफरेंस, मतलब डिफरेंस है कि एक आप खड़े होकर, जैसे सपोज कीजिए आप एंकरिंग करते हैं सर, शादी के एंकरिंग करते हैं, तो जो होता है उसको आप बताते हैं किस तरीके से इवेंट हो रहा है। बट एज अ मीडिया चैनल अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो वहाँ पर उसकी बैक डोर पे क्या हो रहा है उसको आप निकाल के लेकर आएंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं, ये जो दिख रहा है इसके पीछे भी ये चीज़ है, उस कहानी को आप बताएंगे, जो मुझे लगता है।
1: बहुत खूबसूरत, आपको जो लगता है बहुत अच्छा लगता है, और आपकी बातों से मैं भी यूँ समझ ली कि दो चार हो रहा हूँ, मैं भी समझने का एक मौका मुझे मिल रहा है। बहुत अच्छी बातें आपने कही, और लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो समाज में ज़रूर अच्छी अच्छी बातों को प्रसारित करिए, उनको प्रचारित करिए, लेकिन बहुत सोच कर समझ कर तोल मोल कर बोलिए, क्योंकि वर्तमान समय में हम ये भी देखते हैं कि ये हमारा संविधान का अधिकार अधिकार है, हमारी आजादी, हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको बहुत तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी एक बोल से कहीं बात बन भी सकती है, कहीं बात बिगड़ भी सकती है। अनन्या खामोश है, अनन्या से हम जरूर जानेंगे ब्रेक के उस पार, क्योंकि यूथ की आवाज यानी कि चैट जीपीटी और एआई के समय में हम क्या करें क्या ना करें। सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरियानी गगन के साथ भारत न्यूज 360 टीवी से। आप हैं एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अनन्या ठाकुर इसी चैनल से, जो कि ब्यूरो चीफ और ऑपरेशनल हेड हैं। तो मैडम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया है। पुराने समय में हम स्क्रिप्ट लिखा करते थे, एक अनुभव के आधार पर हम काम किया करते थे। आज के समय में आप क्या देखती हैं, ये कितना सही है कितना गलत है चैट जीपीटी एआई?
1: एआई का अगर देखें गगन जी तो यूज बहुत अच्छा है अगर आप उस पे, क्योंकि पहले होता था मैन पावर बहुत ज्यादा लगती थी, टाइम बहुत ज्यादा लगता था, एक एक वर्डिंग आपको चूज करनी पड़ती थी। अभी आप प्रॉम्प्ट डालते हैं एआई में, आपको चीजें निकल के आ जाती हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी स्ट्रेंथ जो आप उसको कहीं ना कहीं अच्छी चीजों में लगा पा रहे हैं, आप मैनुअली से सीधा आप इंटेलिजेंस में जा रहे हैं, चीजें बहुत स्मूथ हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका हम अपने माइंड का यूज बहुत कम कर पा रहे हैं, जिससे हमारा कहीं ना कहीं स्किल है वो दबता जा रहा है। आज का यूथ बहुत फास्ट चीजें ग्रो करना चाहता है, जो कि उस पे अपने माइंड का बिल्कुल वो यूज ही नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट कि जैसे कि हम पहले देखते थे, हम सारी रात बैठ के स्क्रिप्टिंग करते थे, कल हमें क्या कॉन्फ्रेंस पे जाना है, कौन कौन से इंटरव्यूज करने हैं, उसकी तैयारी हम बहुत पहले से कर रहे होते थे। अभी क्या होता है कि उनको पता है एआई करना है, उनको रेडी है, पहले से माइंडसेट उनका क्लियर है, प्रॉम्प्ट डालना है उनके लिए, स्क्रिप्ट आ जाएगी। तो एआई एक तरीके से हमारे लिए बहुत स्मूथ है, हम अगर उसका अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें पर डे की न्यूज आप देखते हैं, तो पहले क्या होता था कि चीजों को एक समराइज करना पड़ता था, चीजों को बहुत कैलकुलेटिव चीजें करनी पड़ती थी, और अभी एआई में वो सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास आ जाती हैं। रिसर्च में बहुत हेल्प हो रही है कि अगर हमें किसी का भी व्यक्तित्व जानना है, किसी के बारे में रिसर्च करनी है, बहुत पहले कि अगर हमारे पास कोई पेंडिंग केसेस है, हमें उसका प्रॉपर अगर जानना है, कोई भी नॉलेज लेनी है, तो वो हमारे लिए बहुत स्मूथ हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है।
0: वेरी गुड। और साथ ही साथ लिसनर्स, मैं कुछ बातें यहाँ जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है इसका एक जो दूसरा पहलू है कि लोगों की जॉब्स भी गई हैं। एआई आपसे ये भी कह रहा है कि इसके बारे में जानिए, पढ़िए, कोर्स करिए, तो निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी में ये कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। जब कोई चीज आती है तो निश्चित तौर पर दिक्कतें परेशानियां होती है, लेकिन वक्त के साथ वो समाज में कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस दिन आपका इंटरनेट चला गया, इंटरनेट नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेट पर ही एआई के माध्यम से चीजों को फाइंड आउट करते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप भैया? शायद अनन्या का कहने का मतलब यह है कि आपको अगर बेसिक नॉलेज है, आपके पास अनुभव है, तो आप जाके कहीं थोड़ा एआई के बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से निर्भर होना ये भी बहुत गलत बात है। इसके बारे में आप जरूर जानिएगा, जरूर सोचिएगा। चूंकि सर जिक्र हो रहा था कि यहाँ एआई चैट जीपीटी का, और युवा आप भी हैं, युवा मैं भी हूँ, युवा अनन्या भी हैं, तो मैं एक युवा के लिए, एक पत्रकार स्टूडेंट्स के लिए एक फाइनली क्या मैसेज आपकी तरफ से जाएगा, क्या आप कहना चाहते हैं, एक छोटा सा संदेश?
2: सर एआई यूज़ कीजिए, टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, इट्स गुड थिंग, बट सबसे पहले आप कॉमन सेंस यूज़ कीजिए।
0: क्या बात, नाइस
2: ना। आप सेल्फ स्टडी आप कभी नहीं छोड़ सकते ना। दूसरी चीज़ की जैसे कि आज की डेट में आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो सीधे सीधे एंकर बनना चाहते हैं, बट एंकर बनने के पहले आपको जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा।
0: क्या बात,
2: आप केवल टीपी पे जो लिख दिया गया वो आप केवल पढ़ रहे हैं, हाँ। तो वो कभी ऐसा होगा तो ब्लैकआउट हो जाएगा दो मिनट के अंदर। आपको पता होना चाहिए क्या है, क्या चल रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी ठीक है, आप प्रॉम्प्ट डाल के चीज़ों को कर लीजिए, लेकिन उस विषय को आपको डिगिंग करना आना चाहिए
0: जी।
2: आप टोटली डिपेंड हो गए वो, लेकिन इसके साथ ही आने वाला टाइम लेटेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। एक चीज़ को समझिए जो है कि टाइम बहुत तेज चेंज हो रहा है। अगर आप बात करें किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी दूसरे टेक्नोलॉजी आने में 10 साल पता चल जाते, 10 साल 12 साल लगते थे। आज आप एक वर्जन से दूसरे वर्जन आने में 6 महीने में भी ख़त्म हो जाता है। तो जैसे आपने भी बीच में भी कहा था कि इसमें जॉब्स बहुत जा रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो सर जॉब जाती तो हैं, लेकिन जॉब उनकी जाती हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने को अपग्रेड नहीं करता। आज का युवा, आज का बच्चा इस बात को ध्यान रखे कि आपको पूरी ज़िंदगी पढ़ना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आप अपग्रेड करते चलना है। आप पहले जो लोग कमाते थे उससे आप 20 गुना कमाना स्टार्ट कर दोगे, इस फैक्ट कमाओगे, लेकिन आपको उसी तरीके से मेहनत भी करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी और ट्रेडिशनल में भी। दोनों को अगर आपने मैनेज किया तब तो ठीक है, लेकिन आप किसी एक पर डिपेंडेंसी आपने की तो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सो लिसनर्स, इस बात को अगर हम वो एक सार निकालें, कोशिश करते जाइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहा यह भी जाता है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी कि संदीप तिवारी जी की बात को ही मैं आगे लेकर जा रहा हूं कि आप वक्त के साथ चलिए, कदम से कदम मिलाकर आप आगे बढ़िए, कोर्स करिए, सीखिए, समझिए और अपने आप को समय के साथ आगे लेकर जरूर जाइए। देखिएगा एक न एक दिन वक्त आपका जरूर आएगा और आप कह सकते हैं कि वक्त हमारा है। बातों का सिलसिला यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ जुड़े रहे भारत न्यूज 360 टीवी के आप एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी, साथ ही साथ जुड़ी रहीं हरफन मौला एक एंकर और ब्यूरो चीफ ऑपरेशन हेड अनन्या ठाकुर जी इसी चैनल से। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सो लिसनर्स, ये वार्ता आपको कैसी लगी? 0120 यानी कि 120-40-60-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे रेडियो एफएम के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ मोहब्बत के साथ गुजारिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय, नमस्कार।

भारत। हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

सुनो शारदा 90.8 FM भारत हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

Thanks.

0: हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
1: राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। कैसे हैं आपके हालचाल, कैसे आपके मिजाज, एक छोटा सा कॉल कर आप मुझे बता सकते हैं। नंबर है वही जाना पहचाना सुना सुनाया जो अक्सर हम आपको बताते रहते हैं, 120-40-60-205 के जरिए आप हमसे अपने हालचाल बता सकते हैं और हमारे बारे में पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके अलावा यानी कि अगर आप शारदा विश्वविद्यालय आ पा रहे हैं तो आपके दरवाजे यानी कि हमारे लिए जो एक कहते ना कि सामंजस्य बनाने वाला जो एक माहौल है, खुशनुमा माहौल बनाने वाला जो एक वातावरण है वो हम यहाँ बनाकर रखते हैं, क्योंकि आप तलाश कर रहे हैं एक अच्छा स्कूल, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण। एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को, जानने को, सुनने को, समझने को मिलेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, कल्चरल एक्टिविटीज़, कल्चरल फेस्ट और साथ ही साथ प्लेसमेंट, ये सब मिलता है शारदा विश्वविद्यालय में। और SSMFE यानी कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट में बहुत कुछ आपको देखने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। तो एक बार जब आप यहां आएंगे तो आप यहीं के होकर रह जाएंगे, है ना। फिलहाल मौसम का जो मिजाज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मौसम का मिजाज है बदलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली NCR में इस वक्त रिमझिम रुनझुन बारिश हुई है जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा है और इसके बारे में अपडेट निकल कर यही सामने आ रही है कि ग्रेटर नोएडा और दिल्ली NCR में आज बादलों की जो आवाजाही के साथ रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि मानसून की सक्रियता के चलते अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। टेम्परेचर ग्रेटर नोएडा का 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और बारिश का जो अलर्ट है, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने और बारिश की प्रबल संभावना है। AQI यानी कि 122 और आज ग्रेटर नोएडा का जो AQI है 122 यानी कि खराब श्रेणी दर्ज किया गया है। ओ माय गॉड, अभी ये हालात है। और क्या अपडेट जाने के जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

भारत। हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीबी यानी एमडीआर टीबी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। रेडियो स्टेशन सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपडेट रहते हैं कि हमारे आसपास क्या खास हो रहा है, क्या नया हो रहा है, उसको जानना सुनने के लिए बस सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, यानी कि रैली का आयोजन कहां हो रहा है, कहां संसद के मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है या कुछ और, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ आपके सामने अपडेट बताने जा रहा हूं कि दिल्ली एनसीआर की जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि ट्रैफिक अपडेट है, तो उस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। और अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है कि संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और वीआईपी मूवमेंट के कारण सेंट्रल दिल्ली के कई चौकों पर भारी दबाव महसूस किया जा रहा है और आप कई रास्तों से अपने आप को बचाकर रख सकते हैं, जैसे कि रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोका रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, जनपथ और राजेंद्र प्रसाद रोड, और पार्किंग की सख्त मनाही, यानी कि संसद क्षेत्र के आसपास सड़कों के किनारे वाहन पार्क करने पर सख्त पाबंदी रहेगी, और राजघाट और किसान घाट के पास भी डायवर्जन किया गया है, यानी कि वहां जो प्रभावित मार्ग हैं वो हैं सत्याग्रह मार्ग, वेलोड्रोम रोड और राजघाट डीटीसी डिपो रोड के आसपास जाने से आप बचें, और संभावित डायवर्जन पॉइंट्स यानी कि दिल्ली गेट, राजघाट क्रॉसिंग, गुरु नानक चौक, शांतिवन चौक और आईपी फ्लाईओवर पर वाहनों को अन्य मार्गों की ओर मोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा चिल्ला और डीएनडी बॉर्डर यानी कि नोएडा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो वाहनों की कड़ी सुरक्षा चेकिंग की जा रही है और पीक आवर्स में यानी कि सुबह 9 से लेके 11 बजे तक और शाम के 6 से 8 बजे तक अगर आप नहीं आ जा रहे हैं कालिंदी गुंज को मैं नहीं भूल सकता, इस रूट पर सुबह थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिलता है तो अपना समय से ऑफिस से मतलब निकलेगा और घर से थोड़ा समय से पहले निकलेगा। ऑफिस से समय से पहले तो नहीं निकल सकते, ये झूठ बोले कौआ काजी आगेगा। जहाँ संभव हो रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं क्योंकि बॉस आपके काम को जानते हैं, आप अच्छा काम करते हैं। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। और सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमेशा मैं आपको अप टू डेट रखता हूं। गुड मॉर्निंग।

हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हम यहां से लगातार ऑन एयर होते हैं। ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन से आप तक पहुंचाते हैं। तो 120 जो कि शहर का एसटीडी कोड है, 40-60-205 हमारा नंबर है, इसके जरिए आप हमसे कॉल पर यानी कि फोन पर बातचीत कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि ये रेडियो स्टेशन आपको कैसा लगता है, क्योंकि हमेशा हम आपको अप टू डेट रखते हैं। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट ये है कि बरसात के मौसम में सेहत का किस तरीके से ख्याल रखें। जाहिर सी बात है कि अगर आपने लापरवाही बरती तो दिक्कतें परेशानियां आपके सामने बहुत बहुत बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। बारिश के पानी में अक्सर हमने देखा है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, आँखों में भी दिक्कतें परेशानियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आँखों का इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है ऐसे मौसम में। और कई लोगों के दिल दिमाग में ये सवाल आते हैं कि कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें। एक्सपर्ट कहते हैं कि हवा, धूल और बैक्टीरिया मिलने की वजह से दूषित पानी से आंखों को इन्फेक्शन का जो जोखिम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे मौसम में कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, लापरवाही न बरतें। बहुत सारे टाइप्स हैं जैसे कि वायरल कंजक्टिवाइटिस, मानसून में सबसे अधिक ये देखा जाने वाला एक संक्रमण वायरल है और इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, लगातार पानी आता है, जलन और खुजली की भी बहुत ज़्यादा समस्याएँ देखने को मिलती हैं और ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। और अक्सर हमने लोगों को देखा है कि ऐसे मौसम में वो हाँ गोरी गोरी मुखड़ी पिकाले काले चश्मा लगा कर आते हैं। और अगर कोई चश्मा लगा कर आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। बहुत सारे वायरल टाइप्स हैं, उसके बारे में भी जानेंगे जरूर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। इंस्टीट्यूट ऑल यू शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
1: बेहतर? बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
0: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
1: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
0: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
0: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
1: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सत पक्षियां रंगा दी तुम बरसाती, सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया।
2: अपने धंधे की फितरत समझिए,

सुनो शारदा 90.8 FM सुनो शारदा 90.8 FM। भारत हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: जनाब, अगर आपको खांसी है, खांसी लगातार है, तो मत करना इंतजार, समय पर जांच कराओ, टीबी को दूर भगाओ, सेहत सही लाभ कई। राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा बहुत अच्छा कार्यक्रम लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने श्रोताओं के लिए। स्मार्ट के साथ मिलकर हम एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही तो लाभ कई। यकीन मानिए कि अगर आप सेहतमंद हैं तो दुनिया जहान की खुशियां आपके दामन में हो सकती हैं। आपके पास रुपया बहुत ज्यादा है लेकिन आप तंदुरुस्त नहीं है, आपकी सेहत आपके साथ नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपके साथ दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा होंगी। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से दुआओं में अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं, यही मांगिएगा कि हे मालिक, मेरी जो काया है वो निरोगी काया रहे। चलिए, इन प्यारी प्यारी दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगर आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको याद होगा कि हम पहले भी टीबी यानी तपेदिक पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर इस विषय पर लौटे हैं। वजह है कि टीबी आज भी हमारे देश में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। मैंने खुद कई बार गांव में लोगों को कहते सुना है, अरे टीबी तो पहले हुआ करती थी, अब कहां होती है। कुछ लोग कहते हैं, हम तो ठीक ठाक खाते पीते हैं, हमें टीबी कैसे हो सकती है। और कुछ लोग तो महीनों खांसी होने के बाद भी कहते रहते हैं, मौसम बदला है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या टीबी केवल कुछ लोगों को होती है? क्या हर खांसी साधारण होती है? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसकी पहचान कैसे होगी? जी हाँ, आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, खासकर टीबी की जांच के बारे में। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब करवाने चाहिए, क्या सरकारी अस्पतालों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, और अगर समय पर जांच हो तो कैसे एक व्यक्ति ही नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। भाई, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन देवी जी, जो हमेशा कठिन स्वास्थ्य विषयों को आसान भाषा में समझाती हैं। भाई, बहुत बहुत स्वागत है टीकन भाभी आपका।
1: धन्यवाद आरजे बाबू जी, और मेरे सभी श्रोता भाई बहनों को मेरा प्यार और विश्वास देने के लिए धन्यवाद। आरजे जी, आपने बिल्कुल सही कहा, टीबी पर बार बार बात करना जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग लक्षण के बावजूद जांच नहीं करवाते। कई बार बीमारी सामने होती है लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते। दरअसल आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक महिला की याद आ रही है जिसकी कहानी मैं भूल नहीं सकती। हमारे पड़ोस के गांव में सरला देवी नाम की एक महिला थी, सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पूरे इलाके में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लगभग 35 साल तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, फिर एक दिन रिटायरमेंट हो गया। शुरुआत के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा, हमेशा थकान बनी रहती थी। लोग पूछते क्या हुआ तो वो हंसकर कह देती थी, अब उम्र हो गई है, पहले जैसी ताकत कहाँ रहेगी। कुछ समय बाद उनकी भूख कम होने लगी, कपड़े ढीले होने लगे क्योंकि वजन घट रहा था, शाम होते होते बुखार आने लगा, रात में पसीना भी आता था, फिर खांसी शुरू हो जाती। लेकिन उन्होंने तब भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि अब नौकरी नहीं रही, इसीलिए शरीर सुस्त रहता है। परिवार वालों ने भी यही सोचा कि उम्र का असर है। ऐसे करते करते लगभग 2 महीने निकल गए। फिर एक दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कई जांचें लिखी, एक्सरा हुआ, बलगम की जांच हुई और फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर पता चला कि सरला देवी को टीबी है। जब उन्होंने यह सुना तो सबसे पहले यही कहा, काश मैंने पहले जांच करवा ली होती।
0: टीकन देवी, आपकी कहानी को सुनके मैं खो गया। सच कहूं टीकन भाभी, ये कहानी सुनकर लगता है कि सरला देवी अकेली नहीं है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लगातार कमजोरी, वजन घटना, बुखार या खांसी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद यही वजह है कि बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अब एक बुनियादी सवाल पूछना बहुत जरूरी है। हम बार बार टीबी का नाम ले रहे हैं, लेकिन आखिर टीबी है क्या?
1: देखिए साथियों, टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के जीवाणु से होती है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन हड्डियों, लिम्फ नोड्स, रीढ़, किडनी, दिमाग जैसे अन्य अंगों पर भी असर करती है। इसीलिए टीबी को सिर्फ खांसी की बीमारी समझना सही नहीं है।
0: लेकिन भाभी, लोग तो टीबी का नाम सुनते ही डर जाते हैं। क्या हर टीबी मरीज दूसरों में बीमारी फैलाता है?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। टीबी दो तरह की हो सकती है। एक लेटेंट टीबी, जिसमें शरीर में कीटाणु होते हैं लेकिन वे सक्रिय नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होते और यह बीमारी भी नहीं फैलाता। दूसरा एक्टिव टीबी, जिसमें कीटाणु सक्रिय होकर बीमारी पैदा करते हैं। फेफड़ों की एक्टिव टीबी दूसरों तक वो फैला सकता है।
0: तो दोस्तों, इस बात को जानना समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार की टीबी है, टीबी क्या है, यही सारी बातें हो रही हैं। ठीक है भाभी, अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये टीबी फैलती कैसी है।
1: आरजी बाबू, जब फेफड़ों की टीबी वाला व्यक्ति खांसता है, छींकता है, बोलता है या गाता है, तो हवा में बहुत छोटे छोटे कण फैलते हैं। इन्हें सांस के साथ अंदर लेने पर संक्रमण हो सकता है, खासकर बंद और कम हवादार जगहों पर।
0: गांवों में लोग कहते हैं कि साथ खाने, हाथ मिलाने या बर्तन साझा करने से टीबी फैल जाती है।
1: नहीं नहीं, ये पूरी तरह से गलतफहमी है। टीबी हाथ मिलाने, साथ खाना खाने, बर्तन साझा करने, गले या सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने से नहीं फैलती, लेकिन मरीज से दूरी नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत होती है इस वक्त पर।
0: किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए टीकन भाभी?
1: आरजे बाबू, इस बात का ध्यान रखिए कि अगर दो हफ्ते से ज्यादा खांसी रहे, बार बार बुखार आए, रात में पसीना आए, वजन घटे, भूख कम लगने लगे, कमजोरी महसूस हो, सीने में दर्द या बलगम में खून आए, तो तुरंत टीबी की जांच करानी चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, इस बात पर अमल करिएगा और फरमाइएगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारत में आज भी टीबी बड़ी समस्या है?
1: भारत में अच्छी प्रगति की है आरजे बाबूजी। मैं आपको एक डेटा के अनुसार बताना चाहूंगी कि 2015 से लेकर 2024 के बीच नए टीबी मामलों में लगभग 21% यानी टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 28% की कमी आई है। लेकिन आज भी कई लोग देरी से जांच करवाते हैं, इसीलिए जागरूकता और समय पर जांच कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही डाटा बताता है कि पहले 21% थी टीबी से मरने वालों की संख्या, लेकिन 2024 तक पहुंचते पहुंचते ये डाटा बताता है कि 28% तक की कमी सिर्फ एक सही समय पर जागरूकता और समय पर जांच उनकी जान बचा सकता है।
0: बिल्कुल, डेटा की बात हुई और साथ ही साथ टीकन भाभी ने दोस्तों जागरूकता की बात की, यानी कि अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं टीकन भाभी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या कुछ लोगों में टीबी का खतरा ज्यादा होता है?
1: जी हाँ, छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, HIV और डायबिटीज से प्रभावित लोगों, कुपोषित व्यक्तियों, भीड़भाड़ वाले घरों में रहने वालों और टीबी मरीज के करीबी संपर्क में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और याद रखिए, अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच होना बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा दोस्तों, मैं भी इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच बहुत जरूरी है। यानी अगर परिवार में किसी को टीबी है तो ये सोचकर नहीं बैठा जाना चाहिए कि बाकी सब ठीक हैं, पूरा परिवार सतर्क रहे, यही समझदारी है। लेकिन अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर आखिर कैसे पता लगाते हैं कि उसे सचमुच टीबी है?
1: सवाल आपका बहुत वैलिड है आरजे बाबू। कई बार लोग आज भी सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर कह देते हैं कि टीबी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी की पुष्टि हमेशा जांच के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग बार बार कहता है लक्षण हो तो जांच करवाएं। और अच्छी बात ये है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में टीबी की जांच पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। ध्यान दीजिएगा, मुफ्त उपलब्ध है।
0: दोस्तों, इस बात को मैं भी रिपीट कर देता हूँ कि जांच टीबी की मुफ्त है। तो सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है टीकन भाभी?
1: सबसे पहले और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जांच है बलगम की जांच। जब किसी व्यक्ति को लगातार खांसी होती है तो उनके बलगम का नमूना लिया जाता है, फिर प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है कि उसमें टीबी के जीवाणु मौजूद हैं या नहीं। ये जांच वर्षों से टीबी पहचानने में मदद करती रही है और आज भी ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
0: दोस्तों, आजकल लोग CBNAAT और टोरेंट जैसे नाम भी सुनते हैं। कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होते हैं।
1: बिल्कुल, ये आधुनिक तकनीक पर आधारित मॉलिक्यूलर टेस्ट है। इसकी खासियत ये है कि ये काफी जल्दी परिणाम दे सकते हैं और केवल यह नहीं बताते कि टीबी है या नहीं, बल्कि कई मामलों में ये भी पता लगा सकते हैं कि कहीं बीमारी सामान्य दवाओं के प्रति प्रतिरोधी यानी ड्रग रेजिडेंट है या नहीं। यही जानकारी डॉक्टर को सही इलाज चुनने में मदद करती है। आज देश भर में ऐसी जांच सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है ताकि लोगों को सही समय पर सही निदान मिल सके।
0: और एक्सरे, इसकी क्या भूमिका होती है? क्योंकि जब भी कोई लंबे समय तक खांसता है, डॉक्टर अक्सर छाती का एक्सरे लिख देते हैं।
1: बिल्कुल सही, छाती का एक्सरे टीबी की पहचान में बहुत उपयोगी है। कई बार स्क्रीनिंग के दौरान एक्सरे में ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं जो टीबी की ओर संकेत करते हैं, फिर डॉक्टर आगे की पुष्टि के लिए अन्य जांच करवाते हैं। यानी एक्सरे बीमारी की ओर इशारा करने वाला महत्वपूर्ण साधन है। अगर डॉक्टर को संदेह हो कि मरीज को दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है, तब और अब भी विशेष जांच उसकी कराई जा सकती है, जैसे कल्चर और दवा संवेदनशीलता का टेस्ट। इसमें ये पता चलता है कि कौन सी दवा मरीज पर प्रभावशाली होगी और इलाज किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा।
0: तो साथियों, बिल्कुल बात साफ है, अनुमान नहीं जांच जरूरी है। खांसी हो तो घरेलू नुस्खों में महीनों न उलझें, बल्कि सही समय पर जांच करवाएं। दो हफ्तों की खांसी हो जाए तो जांच बिना मत समय गवाएं। टीबी का इलाज है तैयार, समय पर जांच है सबसे बड़ा हथियार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टीगन भाभी, एक और बात जानना चाहूंगा मैं आपसे, क्या सरकार सिर्फ उन लोगों की जांच करती है जो खुद अस्पताल पहुंचते हैं?
1: नहीं नहीं, आरजे बाबू, जब टीबी नियंत्रण का तरीका काफी आगे अब बढ़ चुका है देश में, पहले ज्यादातर मामलों में लोग खुद स्वास्थ्य केंद्र आते थे, लक्षण बताते थे, फिर जांच की जाती थी। इसे हम पैसिव केस फाइंडिंग कहते हैं, लेकिन आज केवल इसी पर निर्भर नहीं रहा जाता, अब एक्टिव केस फाइंडिंग पर भी बहुत जोर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी खुद समुदाय तक पहुंचते हैं, गांव, बस्तियों, दूर दराज क्षेत्रों, जोखिम वाले समूहों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि जो लोग किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते उनकी बीमारी भी समय रहते पकड़ी जा सकती है।
0: दोस्तों, बिल्कुल सही बात कर रही हैं हमारी टीकन देवी जी। यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि खुद लोगों तक पहुँच रही है।
1: बिल्कुल, इस सोच के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करोड़ों संवेदनशील और जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, लाखों नए मरीजों की पहचान हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीमारी जल्द पकड़ी जा सकती है और मरीजों को जल्दी इलाज मिल रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि टीबी मरीज की पहचान हो रही है, उनका इलाज किया जा रहा है और इलाज भी मुफ्त हो रहा है सरकारी अस्पतालों में। टीकन भाभी, मान लीजिए घर में किसी एक सदस्य को टीबी हो गई, तब परिवार को क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि इलाज तो मरीज करा रहा है, बाकी लोगों को क्या जरूरत है।
1: यहीं पर सबसे बड़ी गलती की जाती है। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को भी टीबी है तो बाकी सदस्यों की भी जांच करवाना बेहद जरूरी है। इसे संपर्क या कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग कहा जाता है, क्योंकि जो लोग मरीज के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, दिन भर एक ही घर में समय बिताते हैं, तो उसकी वजह से संपर्क में टीबी के जो जीवाणु हैं, उनकी संभावना उनके संपर्क में आने की अधिक हो जाती है। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, कमजोर प्रतिरोध क्षमता वाले लोगों की जांच बेहद जरूरी है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, घर में एक व्यक्ति को टीबी तो पूरे परिवार की जांच जरूरी। यह एक छोटा सा कदम है जो बीमारी को फैलने से न सिर्फ रोकता है बल्कि कई लोगों की जान भी बचा सकता है।
0: लेकिन टीकन भाभी, मुझे लगता है कि टीबी की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा आज भी डर और शर्म है। कई लोग बीमारी छिपाते हैं, जांच नहीं कराते और दूसरों को भी नहीं बताते।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, टीबी का जीवाणु जितना खतरनाक नहीं है, कई बार उससे ज्यादा खतरनाक उससे जुड़ा सामाजिक डर बन जाता है। लोग सोचते हैं अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे, दूरी बनाकर लोग हमसे रिश्ता तोड़ देंगे, रिश्तों पर असर पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं है, कोई पाप नहीं है, यह एक क्योरेबल डिजीज है जिसका इलाज उपलब्ध है और लाखों लोग हर साल पूरी तरह ठीक हो रहे हैं। इसलिए बीमारी छुपाने की बजाय उसका सामना करना ज्यादा समझदारी है। समय पर जांच ना कराने का नुकसान सिर्फ मरीजों को नहीं बल्कि पूरे परिवार समुदाय को हो सकता है।
0: समय पर जांच कराना बहुत जरूरी है और इस बीमारी का इलाज है। ऐसा नहीं कि इस बीमारी का इलाज ना हो या यूं कहें कि लाइलाज है, नहीं, इस बीमारी का इलाज संभव है। सरकारी अस्पतालों में टीबी की जांच निशुल्क

0: सहयोग चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि इलाज में परिवार और समुदाय का साथ बहुत मायने रखता है।
1: बिल्कुल मायने रखता है, यानी कि हमेशा मरीज के आसपास रहें, उसका मनोबल टूटने ना दें, उसकी हिम्मत को ना हारने दें। उसकी हिम्मत आप हैं, यानी कि परिवार। तो इसलिए मरीज के आसपास रहें और उसको यकीन दिलाएं कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बशर्ते कि इलाज समय पर करें। तो दोस्तों, इसमें एक छठी बात जोड़ना मैं चाहूंगा। शुरुआत में आपने सरला देवी की कहानी सुनाई थी दोस्तों, यानी कि टीकन देवी ने वो कहानी हमें सुनाई। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि उन्होंने अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि थकान उम्र की वजह से है। उन्होंने सोचा कि कमजोरी सामान्य बात है। उन्होंने सोचा कि खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। इसलिए अगर आपका शरीर बार बार कई संकेत दे रहा है, कोई संकेत दे रहा है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। समय पर जांच ही सबसे बड़ा बचाव है। तो आइए, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर सेहत की शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: खांसी रहे दो हफ्ते से पार, जांच कराना है समझदार। टीबी हारेगी हम जीतेंगे, इलाज पूरा करके ही हम सब रुकेंगे। राम राम, दुआ सलाम। इन्हीं बातों के साथ मैं ले रहा हूं अनुमति, यानी कि मैं गगन, और मेरे साथ जुड़ी रही टीकन देवी के रूप में खुशबू अख्तर। तो ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 120 शहर का एसटीडी कोड 4060205 नंबर, ईमेल आईडी 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आशा करता हूं कि आप इस जानकारी से बहुत सारा लाभ उठाएंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, दूसरों को भी सेहत के लिए जागरूक करेंगे, क्योंकि सेहत है तो लाभ कई। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति, और खुशबू आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच सर।
1: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
3: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Jan jan ka rakhe dhyan TB Mukt Bharat Abhiyan.
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
3: पहली से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: द वर्ल्ड इज हियर।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुई है।
1: अरे मैं तो कहूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अभी कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। बड़े अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे को जिला में स्थित बीमार नवजात शिशुओं के लिए अलग से बने अस्पताल जिसको कि SNCO बोलते हैं, वहाँ लेके चल सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर साहब और नर्स बहन जी बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। शहर के बड़े अस्पतालों जैसी सब मशीनें इस अस्पताल में हैं। अगर बच्चे की कोई जांच करानी हो तो अस्पताल द्वारा खुद ही करा ली जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
0: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCO में ही दिखाऊंगा।
3: तो आपको क्या समझ में आया, फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCO में दिखाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है।

सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कसम है।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
3: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
2: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

सुनो शारदा 90.8 FM भारत हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Solo Sharda.
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, भारत की अधिकतर जनता गांव में रहती है और इसमें से भी आधे गांव बिना बिजली के ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब भारत ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब हम ऊर्जा के अधिकाधिक उत्पादन के लिए, ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में उसके नवीनीकरण और बचाव के लिए कदम उठा सकते हैं और इस मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग सर्वोत्तम उपाय है, जिससे हम ऊर्जा की मांग और पूर्ति के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। किसान मित्रों, भारत के गांव और शहरों में भी अब सौर ऊर्जा का उपयोग संभव हो गया है। एक समय था जब भारत के अनेक गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन तकनीकी विकास और सौर ऊर्जा की मदद से आज भारत के अनेक गांवों में बिजली है। हालांकि आज भी भारत में ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा की मदद से गांव और शहरों में बिजली उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है और लोग सौर ऊर्जा की मदद से अपने घर को रोशन करने में सफल हुए हैं। और किसान मित्रों, आजकल सोलर पैनल लगवाने पर सरकार भी किसान भाइयों की काफी मदद कर रही है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत के किसानों को सोलर पंप लगाकर उनके कृषि व्यवसाय को बेहतर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को सस्ते दामों पर सोलर पंप लगवाने की सुविधा दी जाती है, जो उनकी खेती के लिए जल सप्लाई की समस्याओं को हल करता है। इस योजना के तहत मात्र हमारे किसान भाइयों को कुल लागत का 10% ही देना होता है और ये पैसा देकर के वो अपने यहाँ पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और अपने खेतों की सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी हमारे किसान बहन भाई प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के बात कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी। किसान मित्रों, आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसे ताज़ा फल सब्जियां मिलें, साथ ही वो रोग रहित हों, स्वस्थ हों और उनमें कम से कम कीटनाशकों का उपयोग किया गया हो। इसीलिए आज के समय में लोग अपने घरों में गृह वाटिका बनाते हैं ताकि उनको ताज़े फल सब्जियां मिलती रहें और जो बाज़ार जाने में आने में उनका जो समय लगता है वो बचा रहे। साथ ही साथ आज की जो आभासी दुनिया है इंटरनेट की, उससे कुछ राहत मिले और वो कुछ कृषि कार्य करें ताकि उनका जो मन है वो प्रफुल्लित हो और जो तनाव है आज की जिंदगी में वो कम हो। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पोषण सुरक्षा में गृह वाटिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे रसोई उद्यान या किचन गार्डन भी कहते हैं। ये घर के आसपास या छत पर उगाई जाने वाली एक बागवानी है, जहां परिवार के उपयोग के लिए रासायनिक कीटनाशकों से मुक्त मौसमी फल, फूल और सब्जियां उगाई जाती हैं। गृह वाटिका पोषण सुरक्षा, आर्थिक बचत और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही ये मनोरंजन और बच्चों को प्रशिक्षण का भी अच्छा साधन है। किसान मित्रों, गृह वाटिका उस वाटिका को कहा जाता है जो आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है, जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल के लिए विभिन्न मौसमों में मौसमी फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। किसान मित्रों, गृह वाटिका से परिवार, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को तरोताजा हवा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन से युक्त फल, फूल और सब्जियां प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा बगिया में कार्य करने से शारीरिक व्यायाम भी होता है। इससे परिवार के सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। किसान मित्रों, प्रत्येक छोटे परिवार में औसतन 100 रुपए की सब्जी प्रतिदिन बाजार से खरीदी जाती है। इस प्रकार प्रतिमाह 3000 रुपए की बचत कर सकते हैं गृह वाटिका बना करके। इसके अलावा यदि फलदार पौधे जैसे नींबू, पपीता, आम, अमरूद ये भी बगिया में लगे हों तो फलों के लिए खर्च होने वाले बजट की भी बचत की जा सकती है। स्वयं की मेहनत और पसीने से उपजी हरी भरी तरोताजा सब्जियों को देखकर सभी का तन मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसके अलावा सब्जियां खरीदने के लिए बाजार में जाने का बहुमूल्य समय भी बच जाता है। वैसे किसान मित्रों, स्वयं की देखरेख और मेहनत से पैदा की गई सब्जियों का स्वाद और आनंद कुछ और ही होता है। तो जो भी हमारे भाई गृह वाटिका बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बहुत सी जगह बची होती है उनके घर आंगन में, उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। शर्त यही है कि वहां पर धूप का आना जाना हो, ऐसी जगह आप गृह वाटिका स्थापित करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।

एक बात और मेरे दिमाग में आई कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चल चढ़ा कोई बंद चला जंजीर, क्योंकि सिकंदर जैसे जब गए तो दुनिया से खाली हाथ गए थे, एक कुट्टी कौड़ी भी नहीं ले जा पाए। तो भाई हमारी और आपकी तो फिर बात ही क्या है। तो तीसरी बात में दादा ने एक चीज और बताई, भाई माया झूठी है, इसके पीछे बावड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग मानते कहां हैं। सुनेगा तीसरी बात में।

किसान मित्रों, अभी आप प्रियंका चौधरी से ये उपदेश सुन रहे थे। किसान मित्रों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने किसानों को हर माह पेंशन देने के लिए किसान मानधन योजना चला रखी है। इस योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को पेंशन के रूप में 60 साल की उम्र पार करने के बाद हर माह 3000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी किसान भाई इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में भाग ले सकता है। योजना में उम्र के हिसाब से किश्त की राशि तय होती है। इसके लिए 18 से 29 साल की उम्र के किसानों को 55 से 109 रुपए के बीच की किश्त देनी होगी। 30 से 39 साल की उम्र के किसानों को 110 रुपए से 199 रुपए के बीच की किश्त देनी होगी और 40 साल की उम्र में योजना से जुड़ने वाले किसानों को हर माह 200 रुपए जमा करवाने होंगे। अगर आवेदनकर्ता पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो उन्हें अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। तो हमारे वो किसान बहन भाई जो किसान मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाकर के आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं रविंदर खालौर और उनके साथियों से एक रागनी।

रविंद्र खालोर और उनके साथियों द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800 0011 6666 पर संपर्क करें।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा, इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरकंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। शकरकंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

सुनो शारदा 90.8 FM भारत हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधु, और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है और ये भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहां से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहां से ऑन एयर कर रहे हैं जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
3: हिंसा को नो

0: नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सबका स्वागत है और ये कार्यक्रम हम स्मार्ट की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंसा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही एक डर सा लगता है। जरूरी नहीं कि हिंसा मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना ही हो। कई बारी हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम हिंसा के रूप में नहीं मानते, उसे अपने जीवन का, समाज का एक हिस्सा, एक रीति मानते हैं। कुछ ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों के बारे में हम आप सबके साथ एक नाटक साझा कर रहे हैं। हिंसा को नो में हमारा आज का विषय है हिंसा से मुंह ना मोड़ो और एक दूसरे से नाता जोड़ो। इस विषय को हम अलग अलग कहानियों के माध्यम से आपके साथ साझा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस कड़ी में हमारी पहली कहानी है श्रेष्ठा की। श्रेष्ठा BCA की स्टूडेंट है। श्रेष्ठा के परिवार में उसकी माता देवकी, पिता महेश और एक छोटा भाई कृष्णा है। श्रेष्ठा पढ़ने में बहुत होनहार है। वो अपनी क्लास में हमेशा ही प्रथम आती है। श्रेष्ठा पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद एवं बाकी की भी गतिविधियों में बहुत अच्छी है। वो अक्सर ही वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आती है। श्रेष्ठा के घर की पूरी एक अलमारी श्रेष्ठा द्वारा लाए गए या यूं कहें तो श्रेष्ठा द्वारा जीते गए मेडल से भरी पड़ी थी। श्रेष्ठा का कॉलेज उसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां तक जाने के लिए श्रेष्ठा को बस का सहारा लेना पड़ता है। बस श्रेष्ठा के कॉलेज की ही है। श्रेष्ठा के साथ साथ उसकी और भी सहेलियां उसी बस से कॉलेज जाती हैं। एक दिन सुबह श्रेष्ठा जल्दी जल्दी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। श्रेष्ठा बस स्टॉप पे जाकर बस का इंतजार करने लगती है। श्रेष्ठा की बस आती है। श्रेष्ठा की बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है। श्रेष्ठा को बैठने के लिए सीट नहीं मिलती है। सीट ना मिलने की वजह से श्रेष्ठा को खड़े होकर ही कॉलेज जाना पड़ता है। कुछ दूर चलकर बस रुक जाती है। वहां से एक और लड़की बस में चढ़ती है जिसका नाम है कंचन। कंचन भी BCA की ही स्टूडेंट है। बस में जगह ना होने की वजह से कंचन को भी खड़े होकर ही आगे का सफर तय करना पड़ता है। कंचन जहां खड़ी होती है उसके बगल में ही बस का कंडक्टर राजू आके खड़ा हो जाता है। कुछ देर तक तो राजू चुपचाप खड़ा रहता है, फिर कुछ देर बाद वह कंचन को किसी न किसी बहाने से छूने की कोशिश करता है। कंचन कुछ बोल नहीं पाती है। बस की बाकी लड़कियां भी चुपचाप इस हो रहे तमाशे को देखती रहती हैं। इधर श्रेष्ठा अपने बुक को खोलकर पढ़ रही होती है। जब श्रेष्ठा की नजर राजू की इन हरकतों पर पड़ती है तो श्रेष्ठा गुस्से से भर जाती है।
1: भैया, ये क्या कर रहे हैं आप?
2: क्या कर रहा हूँ?
1: मैं तब से देख रही हूँ आपकी हरकतें।
2: कौन सी हरकतें?
1: आप कंचन को क्यों परेशान कर रहे हैं इस तरह?
2: मैं क्यों परेशान करूँ? और अगर कर भी रहा हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है? कंचन ने तो कुछ नहीं कहा। यह बस में बाकी लड़कियाँ भी तो हैं, उनको नहीं दिख रहा, बस तुम्हें ही दिख रहा है।
1: हाँ, मुझे दिख रहा है। और कोई और बोले चाहे ना बोले, मैं तो बोलूंगी।
2: अच्छा तो बोलो, क्या कर लोगी तुम?
1: बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं।
2: तो जाओ, जो कर सकती हो कर लो।
0: श्रेष्ठा और परिचालक राजू के बीच ये बहस अभी चल ही रही होती है कि तब तक कॉलेज आ जाता है। सारी लड़कियां उतर जाती हैं और अपने अपने क्लास में चली जाती हैं। पर श्रेष्ठा सीधे प्रिंसिपल ऑफिस जाती है और राजू की शिकायत कर देती है। परिणाम स्वरूप राजू को नौकरी से निकाल दिया जाता है। श्रेष्ठा के इस साहसी कदम से कंचन को न्याय मिल जाता है।

0: हिंसा से मूना मोड़ो की अगली कड़ी में हमारी कहानी है शालू की। शालू एक गृहिणी है। शालू के घर में उसका पति राकेश और 3 साल का एक बच्चा गोलू है। शालू स्वभाव से बहुत ही सरल है। शालू की उसके पड़ोसियों के साथ भी अच्छी बातचीत है। एक रात शालू अपने पति राकेश से कहती है,
1: सुनिए कल आपको ऑफिस कितने बजे जाना है?
2: वैसे तो 10 बजे से जाना है, पर अगर बॉस का कॉल आएगा तो जल्दी भी जा सकता हूँ। क्यों, क्या हुआ, तुम क्यों पूछ रही हो?
1: अरे मैं सोच रही थी कल अपने सहेली मीनू के यहाँ हो आऊँ।
2: क्यों, कोई काम है क्या स्पेशल?
1: नहीं, कोई बहुत स्पेशल काम तो नहीं है, पर पिछले हफ्ते उसकी बिटिया है ना खुशी, उसका जन्मदिन था, तो सोच रही हूँ आज चली जाऊँ तो उससे मिलना हो जाएगा। और सुना है मीनू की भी तबीयत बहुत खराब है, तो उसको भी देखाऊंगी।
2: ठीक है, मैं जब शाम को आता हूँ तो लेते चलता हूँ।
1: ठीक है, फिर मैं आज शाम को तैयार रहूंगी, भूलिएगा नहीं आप।
2: हाँ ठीक है, पर अभी सो जाओ, मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है।
1: हाँ ठीक है।
0: शालू और राकेश सो जाते हैं। कुछ देर बाद बगल के घर से जोर जोर से लड़ने की आवाज आती है, किसी की मारपीट करने की भी आवाज आती है। शालू उठ बैठती है और अपने पति राकेश को भी उठाती है।
1: उठिए उठिए।
2: क्या है, उठा क्यों रही हो?
1: सुनिए, आपको भी बगल के घर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं क्या?
2: हाँ हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। लग रहा है जो बगल में गुप्ता जी हैं और उनकी जो बीवी है उनके बीच झगड़ा हो रहा है।
1: हाँ, पर लग रहा है भैया जो है ना वो भाभी को पीट रहे हैं।
2: लग तो मुझे भी रहा है। अरे छोड़ो, चलो जाओ सो जाओ।
1: चलिए ना, भैया को रोकते हैं नहीं तो भाभी को पीटते ही रहेंगे।
2: पगलाई रहती हो क्या तुम, दूसरों के मामले में हम क्यों पड़े?
1: अरे दूसरों का मामला नहीं, ये घरेलू हिंसा है और किसी भी प्रकार की हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है।
2: बात तो तुम सही कह रही।
1: ये घरेलू हिंसा है और किसी भी प्रकार की हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है।
2: बात तो तुम सही कह रही हो, पर हम इस वक्त कर भी क्या सकते हैं?
1: क्यों नहीं कर सकते, चलिए ना उनके घर चल के उनको समझाते हैं।
2: मतलब तुम नहीं मानोगी? नहीं
1: नहीं, आप चलिए ना प्लीज।
2: मतलब तुम मानोगी नहीं, ठीक है चलो।
0: राकेश और शालू गुप्ता जी के घर जाते हैं और उनको समझाते हैं। गुप्ता जी को भी बात समझ में आ जाती है। इस तरह शालू के प्रयासों से गुप्ता जी को बात समझ में आ गई। अगर वहां शालू ने भी चुपचाप मुंह मोड़ लिया होता तो दृश्य शायद भयावह होता। आशा करते हैं कि आप सबको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी और पसंद आने के साथ साथ आपने समझा भी होगा कि किसी भी समस्या का समाधान मारपीट से नहीं बातचीत करके ही होता है। तो उम्मीद है आप भी इस कहानी के द्वारा दिए गए संदेश को अपने अंदर आत्मसात करेंगे और आप भी कहेंगे हिंसा को नो।

अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहाँ से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120406025 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूं। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: बलगम की सही जांच कराएं, टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
0: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहां से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियां सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: क्या आपको पता है प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु को मां के सीने से लगाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रहता है, जो नवजात शिशु के लिए अच्छा होता है।
2: इस प्रक्रिया को कंगारू मदर केयर कहते हैं। प्रसव के बाद अस्पताल से घर वापस आने के बाद घर पर भी नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रखने के लिए उसे सीने से लगाकर रखना चाहिए।
1: कंगारू मदर केयर सीखने और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नजदीकी आशा या नर्स दीदी से संपर्क कर सकते हैं।
2: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएंगी खुशियाँ बेमिसाल।
1: शिशु की सही देखभाल से फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

सुनो शारदा 90.8 FM भारत हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
1: अजीत का भी नमस्कार। और आइए सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार जो हमें भेजा है डॉक्टर W अंसारी और डॉक्टर बेबी अंसारी जी ने इंदिरा विहार दिल्ली से।
2: और वो लिखते हैं, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है।
1: और आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: मेन रोड तेल्हारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर, वो लिखते हैं,
1: मुझे भी गर्व है उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और आपने लिखा कि राहुल के पापा साफ सफाई का काम करते थे, इसलिए स्कूल के बच्चे राहुल को बुरा भला कहते थे, लेकिन राहुल के पापा तो दूसरों के आरोग्य का महान काम करते थे। यह कहानी रूपी संदेश सुनवाने के लिए विमलेश जी और अजीत जी को दिल से धन्यवाद।
2: जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सौरभ शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सोनल शर्मा, सोनाली शर्मा, सिमरन शर्मा और साक्षी शर्मा।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममताबाई वर्मा।
1: तो विमलेश जी, ये भी जानिए श्रृंखला में आज हम किसकी चर्चा करेंगे।
2: आज हम चर्चा करेंगे पंचतंत्र की कहानियों के लेखक पंडित विष्णु शर्मा के बारे में
1: जी।
2: और ये भी जानेंगे कि पंचतंत्र की कहानियां किन परिस्थितियों में लिखी गई थीं।
1: पंचतंत्र की कहानियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके लेखक के बारे में श्रोताओं बहुत कम लोगों को पता है। आपको पता होगा कि पंचतंत्र विश्व साहित्य को भारतीय साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण देन है
2: जी।
1: पंचतंत्र की लोकप्रियता इस बात से आंकी जा सकती है कि विश्व की अधिकांश भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है।
2: श्रोताओं, पंडित विष्णु शर्मा संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्हें प्रसिद्ध संस्कृत नीति पुस्तक पंचतंत्र का रचनाकार माना जाता है। पंचतंत्र की कहानियों ने उन्हें अमर बना दिया। माना जाता है कि जब इस पंचतंत्र ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब आचार्य विष्णु शर्मा की उम्र 80 वर्ष के करीब थी।
1: पंचतंत्र की रचना ईसा पूर्व दूसरी और तीसरी शताब्दी के बीच में हुई। लेकिन विमलेश जी, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि पंचतंत्र की कहानियां लिखी क्यों गईं और किन परिस्थितियों में लिखी गईं?
2: जी अजीत जी, जरूर। इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। पंडित विष्णु शर्मा जी दक्षिण भारत के महिलारोप्य नामक नगर में रहते थे।
1: महिलारोप्य?
2: जी, महिलारोप्य ये प्राचीन दक्षिण भारत का एक नगर था। महिलारोप्य के राजा थे अमर शक्ति। उनके 3 पुत्र थे। राजा चाहते थे कि उनके पुत्र राजनीति और नेतृत्व का गुण सीखें, लेकिन वो असफल रहे। राजा ने उन्हें सिखाने के लिए बहुत से पंडित और आचार्य रखे, पर कोई भी उन्हें सिखा न सका। तो अजीत जी, अब आप बताएं फिर क्या हुआ होगा?
1: फिर राजा ने घोषणा की कि जो विद्वान उन्हें शिक्षा दे पाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। फिर राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली
2: जी।
1: मंत्रियों ने कहा कि वे आचार्य विष्णु शर्मा को उनका

0: शिक्षक नियुक्त करें। विष्णु शर्मा राजनीति तथा नीति शास्त्र सहित सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे।
1: राजा तैयार हो गए तथा विष्णु शर्मा को दरबार में बुलाकर घोषणा की कि यदि वे उसके पुत्रों को कुशल राजसी प्रशासक बनाने में सफल होते हैं तो वो उन्हें 100 गांव तथा बहुत सारा स्वर्ण भेंट स्वरूप देंगे।
0: तो श्रोताओं, फिर ऐसा हुआ कि आचार्य विष्णु शर्मा हंसे और कहा, राजन, मैं अपनी विद्या को नहीं बेचता, मुझे किसी उपहार की इच्छा या लालच नहीं है
1: जी।
0: आपने मुझे विशेष सम्मान सहित बुलाया है, इसलिए मैं आपके पुत्रों को 6 महीने के भीतर कुशल प्रशासक बनाने की शपथ लेता हूँ। अगर मैं अपना संकल्प पूरा करने में असफल रहा तो राजन, मैं अपना नाम बदल दूंगा।
1: फिर क्या था, राजा ने प्रसन्नता से तीनों राजकुमारों की जिम्मेदारी विष्णु शर्मा को दे दी। विष्णु शर्मा जानते थे कि वे उन राजपुत्रों को पुराने तरीकों से कभी पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि वे बहुत ही नीरस हैं। उन्हें थोड़ा सरल तरीका अपनाना होगा, और वो तरीका था उन्हें रोचक कहानियां सुनाकर आवश्यक ज्ञान सिखाने का।
0: तो इसीलिए उन्होंने उन्हें शिक्षित करने के लिए जीव जंतुओं और पशु पक्षियों पर आधारित कहानियों की रचना की, और इनके माध्यम से वे उन्हें नीति सिखाया करते थे
1: जी।
0: श्रोताओं, शीघ्र ही राजकुमारों ने इसमें रुचि लेना आरंभ कर दिया तथा नीति सीखने में सफलता प्राप्त की
1: जी।
0: और इस प्रकार इन कहानियों का संकलन 5 समूहों में पंचतंत्र के नाम से लगभग 2000 साल पहले बना
1: जी। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी? हमारा प्रयास रहता है कि आमतौर पर जिन रोचक तथ्यों को लोग नहीं जानते उन्हें हम उमंग प्रसारण में उपलब्ध कराएं। तो अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, तो आज का प्रश्न है, पंडित विष्णु शर्मा किस नगर के रहने वाले थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: पंडित विष्णु शर्मा किस नगर के रहने वाले थे?
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है, जिस पर आप अपना उत्तर हमें तत्काल भेज सकते हैं।
1: और हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in, जिस पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के कार्यक्रम।
1: तो श्रोताओं, कार्यक्रमों की कड़ी में आज का पहला कार्यक्रम अन्याय।
0: तो आइए सुनते हैं और पता लगाते हैं किसने किसके साथ किया अन्याय, और ये भी कि
1: जिसके साथ हुआ अन्याय क्या उसे न्याय मिला।
2: बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे।
3: अच्छी हो तो अच्छा है।
2: पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया।
3: इधर लाओ।
2: अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे?
4: अच्छा रुको, मैं उठाती हूँ।
2: ये सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी।
4: जाती हूँ।
2: तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्खड़ और क्रूर था। वो आदिवासियों के गांवों में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला,
5: 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है।
3: जी जी जी सरकार।
5: अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, ये जान लो।
2: आदिवासी लोग चुप हो गए। वे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछें तो किससे, कुछ करें तो क्या? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि
6: सरकार काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा?
2: तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया।
5: क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से ये सवाल मत पूछना।
2: आदिवासी सहम गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्री राम राजू। श्री राम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर वो 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गया। जब वो उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते।
6: मुश्किल हो गई है, जीना मुश्किल हो गया हमारा।
7: मालिक
6: कुछ तो मदद कीजिए,
7: मदद कीजिए मालिक,
6: आप हमें बचा सकते हैं।
7: अंग्रेज हम पर बहुत अत्याचार करते हैं मालिक।
2: और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कहा,
8: देखो अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए, तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए।
2: उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई।
6: एकदम ठीक कह रहे हैं,
7: ठीक कहते हैं,
9: अब हम और गुलामी नहीं करेंगे।
7: बिल्कुल नहीं सहेंगे अत्याचार, अब हम बिल्कुल नहीं सहेंगे।
2: श्री राम राजू ने उन्हें ये भी बताया कि
8: देश में और लोग भी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम गांधी है। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे।
2: यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए।
10: चलो आगे बढ़ो,
11: एक साथ आवाज उठाएंगे, चलो चलो।
2: भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा। भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े।
11: अब हम अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
2: अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी। पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा ना पाई। जब संकरी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते, और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि
8: देखो अंग्रेजों से लड़ो, लेकिन एक भी भारतीय सैनिक का बाल भी बांका ना होने पाए।
2: अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। जब वो पहाड़ों से कूच करते थे तो लगता था मानो उन्हें किसी का भय ना हो। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाते थे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था।
8: सुनो, कोई खबर मिली?
6: जी, गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर अंग्रेजों की एक टुकड़ी दिखाई दी है।
2: अंग्रेज

0: अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानों कान खबर ना हो। ये सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती थी। राजू के लोगों को गांव गांव का सहारा था।
1: अरे खाना मिल जाएगा बाबा, धीरे चलो झाड़ी बचा के।
0: गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि
2: सर मेरा एक सुझाव है, आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रखकर मारना होगा।
3: ये अच्छा रहेगा।
0: अंदर जंगल के गांवों में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए।
1: कितने दिनों से चूल्हा नहीं जला है?
4: मुझे भूख लगी है।
5: पेट में घुटने दिए हुए हैं। खाना
1: कब तक बच्चों को पानी उबाल उबाल के पिलाएंगे ऐसे?
0: किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांवों में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहां तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा।
3: जला दो इन सब की फसलों को।
1: अरे नहीं मालिक, नहीं, नहीं,
3: जला दो ये सब।
0: आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक ये तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी? राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था, उससे उनका दुख देखा नहीं गया। राजू ने सोचा कि
6: अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। 2 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है, और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी।
0: ये सोचकर श्रीराम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। सेना के मेजर गुडोल मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। मेजर गुडोल मनी मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहां उम्मीद थी कि उनका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। राजू मांग कर रहा था कि
6: मुझे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से मेरे साथ बर्ताव हो,
0: पर गुडोल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले। पास। उसके इशारे पर एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया गया। इस तरह अल्लूरी श्रीराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ।

0: इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अन्याय। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं एक विज्ञान गीत। कार्यक्रम है खट्टा तो क्यों।
2: ये एक विज्ञान गीत है जो हमें जानकारी देगा कि कुछ फल खट्टे होते हैं तो वो क्यों, क्या पाया जाता है उनमें।
3: साथियों, आपको खाने का कौन सा स्वाद सबसे अधिक पसंद है? मीठा, कड़वा या खट्टा? खट्टे के तो नाम से ही मुंह में पानी आने लगा, सही कहा ना? क्या आप जानते हैं खाने की चीजों का स्वाद खट्टा क्यों होता है? आइए इस गीत के माध्यम से जानें कि खट्टे स्वाद वाली चीजों में कौन सा पदार्थ होता है जो उन्हें खट्टा स्वाद देता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खट्टा तो क्यों। श्रोताओ और आइए अब सुनते हैं अंग्रेजी की एक हास्य प्रधान कहानी जो एक ईरानी लोक कथा है।
1: शीर्षक है द टॉकेटिव बार्बर।

0: At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous.
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दी टॉकेटिव बाबर। तो कैसा लगा ये कार्यक्रम? अब हमारा प्रसारण अपनी समाप्ति की ओर है, तो आपसे हम आज्ञा चाहेंगे, तो इसलिए कल तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
5: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
3: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है, तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की, पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माजी, मुझे टीबी है।
1: टीबी और छुपा कर रखा?
2: माजी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें।
3: टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
1: केवल माँ का दूध
2: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत।
1: अतिरिक्त पोषण की जरूरत,
2: दूध के साथ ऊपरी आहार की अहमियत।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।

सुनो शारदा 90.8 FM भारत हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 22वीं कड़ी धरती पे उतरते बादल। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने हवा में नमी के बारे में जाना। जल स्रोतों जैसे समुद्र, नदियों व झीलों से सूरज की गर्मी द्वारा जल भाप में बदलता है। ये भाप या नमी हवा की उमस को बढ़ाती है। धरती पर पानी एक जल चक्र के माध्यम से समुद्र से हवा में व हवा से पुनः समुद्र में मिलता रहता है। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 22वीं कड़ी

0: मानव के लिए मम्मी।
1: अलार्म से कहाँ उठने वाला है मानव, उसे तो जब तक चार पांच आवाजें ना लगाओ उठता ही नहीं है वो।
2: अरे मम्मी आवाजें तो आप देती होंगी, हम तो बस उसके चेहरे पर थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं और अपने आप उठ जाता है मानव।
1: सृष्टि ये तो बताओ मानव आज इतनी सुबह क्यों उठ रहा है भला, अभी तो परीक्षा के दिन दूर है ना।
0: अरे मम्मी आज से मानव भी हमारे साथ सुबह की सैर पर चलेगा।
1: अच्छा ये तो अच्छी खबर है, सैर के बहाने मानव सुबह जल्दी तो उठेगा कम से कम।
0: वो भी बिना आवाज लगाए। ओ लगता है मानव उठाया, देखो
2: लो वो आ रहा है हमारा मानव।
3: गुड मॉर्निंग मम्मी।
1: गुड मॉर्निंग बेटा। अरे आज तो कमाल हो गया, मानव बिना किसी के जगाए सिर्फ अलार्म से उठ गया।
3: हाँ मम्मी सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए मैंने अपनी एक आदत बदल दी है।
0: अच्छा किया मानव तूने, नहीं तो अभी विवेक भैया तेरे ऊपर पानी डालने ही वाले थे।
2: पर सृष्टि लगता है अब हमें फिर कभी मानव को जगाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों मानव?
3: हाँ भैया अब मैं सुबह उठने के लिए आलस नहीं करूंगा।
2: बहुत अच्छा।
1: चलो अच्छा है, एक अच्छी आदत डालने के लिए मानव एक बुरी आदत भी छोड़ना चाहता है।
3: दीदी पापा नहीं दिख रहे, क्या वो अकेले ही सैर पर निकल गए हैं?
0: नहीं मानव, पापा छत पर प्राणायाम कर रहे हैं, बस आते ही होंगे, हम सभी सैर पर एक साथ चलेंगे।
2: पापा के नीचे आते ही हम सैर पर चल पड़ेंगे।
1: लो आ गए तुम्हारे पापा भी।
3: गुड मॉर्निंग पापा।
4: गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। वाह भाई वाह, आज तो मानव भी सैर पर चलने के लिए तैयार है।
3: हाँ पापा आज से मैं रोज ही आपके साथ सैर पर चलूंगा।
4: वेरी गुड, तो चलो बच्चों चलते हैं पार्क की ओर।
3: चलो, चलो, चलो, चलो, चलो।

0: अरे मजा आ गया भाई।
1: अरे वाह, आज तो ऐसा लगता है जैसे बादल धरती पर ही उतर आए हो।
2: अरे मानव, ये बादल नहीं कोहरा है।
3: हाँ मानव, तू जिसे बादल समझ रहा है वो बादल नहीं कोहरा है।
1: अगर ये कोहरा है तो फिर बादल किसे कहेंगे?
4: मानव, कोहरा और बादल दोनों जल की नन्ही नन्ही बूंदों से बने होते हैं।
5: मानव, और ये जल की नन्ही नन्ही बूंदें हवा के साथ उठती और गिरती रहती हैं।
1: पर ये जल की बूंदें कहाँ से आती हैं?
3: अरे मानव, कोहरे और बादल की ये जल की नन्ही बूंदें वातावरण में उपस्थित भाप से बनती है।
1: लेकिन पापा, मुझे तो बादल और कोहरा एक ही जैसे लग रहे हैं।
4: बेटे मानव, ये एक समान तो नहीं, पर हाँ, तुम कोहरे को धरती की सतह के पास उतर आने वाले बादल भी कह सकते हो।
1: पापा, अगर कोहरा मतलब धरती के पास के बादल, तो बादल और कोहरा समान हुए ना?
4: नहीं बेटा मानव, कोहरा अचानक बनता है और तीव्रता से फैलता है। हाँ, कोहरे और बादल दोनों में समानता जरूर है कि ये हवा की नमी से बनते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए मुझे हल्की सी ठंड लग रही है।
4: अच्छा।
2: मानव, ठंड तो लगेगी ही तुझे। सूर्योदय के बाद उठने वाला यदि सुबह 5 बजे सैर पर निकल जाए तो उसे तो अच्छा खासा मौसम भी ठंडा लगेगा।
1: अच्छा दीदी, मेरी तो तुम छोड़ ही दो। आपको तो 12 महीने ठंड लगती है, तभी तो रोज गर्म पानी से जो नहाती हो।
5: भाई मानव, मुझे तो ठंड नहीं लग रही है, पर हाँ, इस कोहरे के कारण मुझे दूर की वस्तुएं साफ नजर नहीं आ रही।
3: मम्मी आप ठीक कह रही हैं। कोहरे के कारण हमारी आंखों को दूर स्थित वस्तुओं को साफ देखने में मुश्किल होती है।
4: हाँ भाई, कोहरा छाने से लोगों की देखने की क्षमता यानी विजिबिलिटी कम हो जाती है।
1: हाँ, कोहरा छाने पर हमारी देखने की क्षमता 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है, ऐसा मैंने अपनी साइंस की बुक में पढ़ा था।
5: अच्छा तो दीदी, और क्या क्या पढ़ा है आपने कोहरे के बारे में?
1: यही
5: कि कोहरा जब अधिक सघन हो जाता है तो धुंध कहलाता है।
1: धुंध? भला ये क्या बला है? गेहूं में घुन के बारे में तो मैंने सुना है, पर ये धुंध क्या होता है?
5: अरे मानव, ये धुंध है धुंध, गेहूं की घुन नहीं।
3: मानव, धुंध और कोहरे को तुम भाई भाई भी कह सकते हो, जैसे तुम और मैं।
1: मैं कुछ समझा नहीं भैया।
4: मानव, कोहरे की तुलना में धुंध में जल की नन्ही बूंदों की संख्या अधिक होती है। या यूं भी कह सकते हो कि सघन हो जाने पर कोहरा ही धुंध में बदल जाता है। और बच्चों, अब देखो, आज तो बातों में पता ही नहीं चला कि कब हम पार्क तक पहुंच भी गए।
1: चलो, अच्छा हुआ पार्क इतनी जल्दी आ गया, मुझे तो चलते चलते बड़ी थकान हो गई थी।
4: हाँ, आदत नहीं है ना,
1: बैठने का मौका तो मिल ही जाएगा।
2: अरे मानव, पार्क में तुम आराम से बैठ भी सकते हो, बैठ जाओ।
1: पापा, वो देखो घास पर मोती। अरे वाह।
4: बेटा ये मोती नहीं, ओस है।
5: हाँ मानव, घास पर दिखाई देने वाले ये मोती ओस की बूंदे हैं।
1: ओस की बूंदे, और वो भी इतनी चमकीली।
2: हाँ मानव, ये ओस ही है जो सूर्य की किरणों से मोती जैसी चमक रही है।
3: और मानव, इन ओस की बूंदों के पीछे भी हवा में समाई नमी की ही कहानी है।
1: अच्छा, तो भैया ये ओस भी जल की भाप यानी नमी का ही एक रूप है ना?
3: हाँ मानव, ओस भी पानी का ही बस एक और रूप है।
2: पानी का ही रूप है ओस, पर इतना सुंदर मानो मोती।
1: तब तो अच्छा ही है दीदी, पापा की जेब हल्की होने से तो बची जाएगी।
2: अरे मानव, ओस के बीच में पापा की जेब कहाँ से आ गई अब?
1: मम्मी, दीदी आपसे बहुत दिनों से मोती के हार की जिद कर रही थी ना?
5: हाँ कर तो रही थी, तो क्या?
1: अरे मम्मी, क्यों ना दीदी को इन मोती जैसी ओस की बूंदों का हार ही दे दिया जाए, इससे पापा के पैसे भी खर्च होने से बच जाएंगे। क्यों दीदी?
5: मानव, इन मोतियों का हार तुम ही पहनो।
3: वैसे भी मानव, ये ओस के मोती मानव के नहीं बल्कि हमारी धरती के आभूषण है, इन्हें हम क्यों ले?
4: हाँ मानव, विवेक सही कह रहा है, हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए धरती की सुंदरता को नष्ट नहीं करना चाहिए।
5: वैसे मानव, बहुत आराम कर लिया ना पार्क में आकर तुमने, अब घर की ओर चलें।
0: चलो भाई, चलो जल्दी।
1: पापा, लगता है कोहरा छटने लगा है,
4: हाँ बेटा, धीरे धीरे देखो कोहरा कम होने लगा है।
3: मानव, दिन चढ़ने के साथ साथ हवा के गर्म होने पर कोहरा कम हो जाता है।
2: विवेक भैया, दिन चढ़ने के साथ साथ वाहनों की हलचल भी तो बढ़ने लगी है।
5: कुछ समय बाद वाहनों के शोर में पक्षियों के चहचहाने की आवाज दब जाएगी और सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न की आवाज ही सुनाई देगी। हाँ,
4: शोर ही नहीं, साथ में वाहनों से निकला धुआं भी प्रकृति की सुंदरता को ग्रहण लगाएगा।
2: और पापा, ये धुआं कोहरे के साथ मिलकर स्मोक को जन्म देता है। अरे दीदी, मैंने स्मोक तो सुना है, पर ये स्मोक क्या है?
5: मानव, स्मोक कोहरा ही है, लेकिन इसमें धुएं की मात्रा बहुत अधिक होती है।
3: बिल्कुल ठीक सृष्टि, स्मोक में कारखानों, वाहनों और आग लगने की घटना से निकला हुआ धुआं जल की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ मिल जाता है।
2: इस स्मॉग में विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो भैया, स्मॉग में देखने की क्षमता कोहरे से भी कम हो जाती है?
3: हाँ मानव, लेकिन स्मॉग कोहरे की अपेक्षा अधिक हानिकारक है।
2: वो क्यों? मानव, स्मॉग में धुएं की अधिक मात्रा हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है। तब तो ये स्मॉग बहुत खतरनाक हुआ।
3: हाँ मानव, स्मॉग इंसानों और पेड़ पौधों दोनों के लिए बहुत बुरा है।
4: बच्चों, कोहरे की तुलना में स्मॉग बहुत दिनों तक छाया रहता है।
2: हाँ, यदि हवा में धुएं की मात्रा बहुत अधिक हो तो स्मॉग लंबे समय तक छाया रहता है।
3: और स्मॉग की वजह से रोड एक्सीडेंट भी होते हैं।
2: स्मॉग से विजिबिलिटी जो कम हो जाती है।
5: क्या बच्चों, सुबह सुबह एक्सीडेंट की बातें शुरू कर दी तुम लोगों ने। हाँ, ये समय तो प्रकृति की सुंदरता को निहारने का है।
3: हाँ मम्मी, धरती की सुंदरता के साथ आकाश की लालिमा भी मनमोहक लग रही है।
2: सच, आसमान से धरती तक छाई सूर्य की लालिमा और पक्षियों का कलरव बड़ा मनभावन है।
1: हाँ,
2: तो दीदी तुम यहीं पर बैठ के यहाँ की लालिमा को देखो और मैं अकेले ही टीवी देख लूंगा, ठीक है?
1: चलो चलो चलो चलो,
5: लड़ाई करने से बाज नहीं आते तुम लोग, चलो।
2: आज की सैर काफी अच्छी रही है ना, समय का पता ही नहीं चला।
3: हाँ, और मानव तुम्हें कैसा लगा आज?
2: मुझे तो बहुत अच्छा लगा भैया, अब तो मैं रोज आप सबके साथ सैर पर जाया करूँगा।
5: हाँ, अब हमारे मानव ने जल्दी उठना जो सीख लिया है। हाँ।
2: वो भी आपके बगैर मम्मी।
5: मतलब
2: पहले मानव को जगाने के लिए आपको उसे 3-4 बार आवाज देनी पड़ती थी, अब मानव अपने आप उठने की आदत डाल रहा है। मम्मी।
1: मम्मी वो तो ठीक है, पर पापा फोन पे किससे बातें कर रहे हैं?
2: अरे मानव, ये तो पापा ही बता सकते हैं ना, भला मम्मी को क्या पता कि पापा किसके साथ बात कर रहे हैं।
4: अरे भाई, अभी अभी मेरे कानपुर वाले दोस्त राजीव का फोन आया है, वो बस अभी 8 बजे की ट्रेन से आ रहा है।
5: अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है।
1: हाँ। पापा, राजीव अंकल वही है ना जो कानपुर के केंद्रीय विद्यालय में साइंस टीचर है?
4: हाँ, लेकिन बेटे उन्हें लेने रेलवे स्टेशन जाना होगा, उन्होंने हमारा ये नया घर अभी तक देखा नहीं है ना।
3: तो इसमें क्या परेशानी है पापा, उन्हें लेने हम चले जाते, आप आराम से अपने ऑफिस जाइए।
4: पक्का?
3: पक्का।
4: अब तो ठीक है विवेक, और तुम मानो तुम भी दोनों जने साथ चले जाना, ठीक है? लेकिन हाँ, याद रखना ट्रेन ठीक 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ जाएगी।
1: अरे वाह, आज तो दिन भर बाहर घूमने का प्रोग्राम है।
3: मानव तेरे तो मजे। अच्छा मम्मी, हम लोग स्टेशन जा रहे हैं फिर।
5: हाँ बिल्कुल, लेकिन ध्यान से जाना बेटा।
1: हाँ। जल्दी चलो ना।
4: चलो भाई,
5: मानव ध्यान से।

0: इधर आना मेरे साथ।
1: हमेशा टोकते रहते
0: हैं अंकल। वो रे राजीव अंकल।
1: नमस्ते अंकल।
2: नमस्ते नमस्ते बच्चों। और घर पर सब ठीक ठाक है?
1: हाँ अंकल, घर पे सब कुछ ठीक है।
0: अंकल फटाफट घर चलते हैं, मम्मी इंतजार कर रही हैं। मैं टैक्सी लेकर आता
1: हूँ। आइए अंकल, आप मेरे साथ
2: चलो। भाई बच्चों, यहाँ का मौसम तो काफी अच्छा है।
0: हाँ अच्छा है अंकल, हल्का हल्का फॉग यानी कोहरा नजर आ रहा है।
1: अंकल कहीं ये कोहरा स्मॉग में तो नहीं बदल जाएगा ना?
2: अरे वाह, मानव तो बहुत कुछ जानता है। पर मानव यहाँ इतना प्रदूषण थोड़ी है।
0: अंकल स्मॉग ना सही, लेकिन ये अन्य कोहरे में तो बदल सकता है।
2: हाँ विवेक, मौसम के हिसाब से अब विकिरण फॉग यानी रेडिएशन कोहरा तो बन सकता है, क्योंकि ये रात के समय आकाश के साफ होने पर ही बनता है।
1: अच्छा, तो अंकल इस कोहरे को भी साफ सफाई पसंद है। साफ आसमान होने पर ही विकिरण कोहरा बनता है। पर ये विकिरण कोहरा बनता कैसे है?
2: मानव ये कोहरा धरती का तापमान कम होने पर बनता है। और हाँ, विकिरण कोहरा कभी भी पानी की सतह पर नहीं बनता। हाँ विवेक, तुम अन्य प्रकार के कोहरों के बारे में जानते हो?
0: जी अंकल। अंकल मैंने एडविक्शन यानी अभिवाहन कोहरे के बारे में भी सुना है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए।
2: हाँ विवेक बिल्कुल, एडविक्शन या अभिवहन कोहरा उस समय बनता है जब कोष्ण और नम ठंडी हवा धरती पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है।
0: अच्छा।
2: हाँ कभी कभी ये कोहरा पहले से बने कोहरे के स्थानांतरित होने पर बनता है।
1: तो आपका मतलब ये है कि एडविक्शन कोहरा दूसरों का स्थान हत्या लेता है?
2: बिल्कुल।
0: हाँ, ये तो ऐसा ही हुआ, एक कोहरा खत्म हुआ तो दूसरा हाजिर।
1: अंकल क्या कोहरा समुद्र के ऊपर भी छाता है?
2: देखो मानव बेटा, सागर की सतह के ऊपर भी कोहरा छाता है, जिसे समुद्री कोहरा या समुद्री धुआं भी कहा जाता है।
0: अरे मानव, तू तो कोहरे के पीछे हाथ धोकर पड़ गया।
2: अरे अच्छा ही है ना विवेक, मानव की कोहरे के प्रति जिज्ञासा से मुझे भी अपने स्कूल के छात्रों की याद आ गई। अरे भाई वो भी मुझसे इतने ही प्रश्न पूछते
1: हैं। देखा
0: अंकल घर आ गया।
2: हाँ
0: देखिए।
2: अरे बेटे घर आप लोग ने चेंज?
0: जी अंकल आइए आइए।
3: नमस्ते भाई साहब।
2: नमस्ते भाभी जी। नमस्ते।
3: और बताइए सफर कैसा रहा?
2: अब रेल का सफर तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन भाभी ये विवेक और मानव के साथ रेलवे स्टेशन से यहाँ तक का सफर काफी अच्छा।
3: विवेक अंकल को कमरे में ले चलो
0: जी,
3: तब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ।
0: आइए अंकल।
2: हाँ चलो बेटा। अब बेटा ये सामान यहाँ
0: रखो। जी जी।
1: दीदी क्यों ना हम भी राजीव अंकल के पास चले?
3: चलो मानव चलो।
2: अरे आओ बच्चों आओ आओ आओ।
1: अंकल।
2: हाँ?
1: विवेक भैया कहाँ गए हैं?
2: मानव वो मेरे लिए पानी लेने गया है।
1: ओ।
2: वैसे अभी तुम्हारी ही बातें कर रहा था।
1: मेरी बातें?
2: हाँ विवेक बता रहा था कि आज मानव भी पहली बार सुबह सैर के लिए गया था। अच्छा मानव ये बताओ कि आज सुबह की सैर में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा?
1: मुझे तो धरती के पास के बादल बहुत अच्छे लगे।
0: लीजिए अंकल पानी।
2: अरे थैंक यू विवेक बेटा। अच्छा मानव तो सुबह तुमने कोहरा देखा?
3: हाँ अंकल, कोहरे को ही मानव धरती के समीप वाले बादल कह रहा था।
2: बच्चों तुम्हें ये पता है कि लगभग हर समय पृथ्वी का आधा भाग बादलों से घिरा रहता है?
1: अरे वाह, ये तो हमारे लिए एक नई जानकारी है।
2: बच्चों बादलों की तो कई बातें अनोखी हैं।
1: आप कौन से बादलों की बात कर रहे हैं अंकल?
2: मैं उन सभी बादलों की बात कर रहा हूँ बच्चों, जो धरती की सतह से लेकर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक पाए जाते हैं।
3: अंकल पृथ्वी पर ये बादल वायुमंडल की नमी के संघनन के कारण बनते हैं ना?
2: देखो सृष्टि, जब नम हवा ऊपर उठने के दौरान फैलती है तो ये ठंडी भी होने लगती है,
0: और इस प्रकार बादलों में जल की बहुत छोटी छोटी बूंदे बन जाती
2: हैं। बिल्कुल।
1: पर भैया ये जल की बूंदे आसमान में स्थिर कैसे रह पाती हैं?
0: मानव ये जल की बूंदे स्थिर नहीं होती, बल्कि हवा के साथ तैरती रहती हैं।
2: हाँ बच्चों, बादलों की नन्ही जल की बूंदे हवा के प्रतिरोध के कारण धरती पर नहीं गिरती।
3: और जब इन नन्ही जल बूंदों का आकार बड़ा हो जाता है तब ये बारिश बन बरसती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसका मतलब बादल ना हो तो वर्षा भी नहीं होगी।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो मानव तुम।
1: मगर अंकल मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही।
2: कौन सी बात बेटा?
1: ये तो मुझे समझ में आ गया कि बिन बादल बरसात नहीं होती, लेकिन फिर बिना बरसात बादल क्यों होते हैं?
3: वाह मानव, अच्छा सवाल किया तूने।
2: मानव, ये तो तुम समझ ही गए कि सभी बादल वर्षा नहीं करते।
1: हाँ अंकल।
2: तो ये बात और जान लो कि बादलों को उनके आकार और ऊंचाई के अनुसार मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है। फिर प्रत्येक वर्ग में भी बादलों के अन्य प्रकार हैं। इस तरह से वैज्ञानिक 9-10 प्रकार के बादलों का अध्ययन करते हैं।
3: ठीक वैसे ही ना अंकल, जैसे गेहूं तो एक अन्न है, लेकिन सुजाता, लोकवान, पूसा गेहूं की किस्में हैं।
2: अरे वाह बेटा वाह, वेरी गुड।
0: सृष्टि, इसी प्रकार कुछ वैज्ञानिक बादलों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई के अनुसार, जैसे उच्च स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल और निम्न स्तरीय बादलों के रूप में करते हैं। तो कुछ लोग बादलों का अध्ययन धरती से दिखाई देने वाली बादलों की आकृति के अनुसार करते हैं। ठीक कहा ना अंकल मैंने?
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने विवेक। देखो मुख्यतः बादल तीन प्रकार के होते हैं, पक्षाप बादल, स्तरी बादल और कपासी बादल।
0: मानव, पक्षा बादल यानी सीरस क्लाउड को उच्च स्तरीय बादल भी कहा जाता है।
3: अंकल, पक्षाब बादलों में हिमकण भी होते हैं क्या?
2: सृष्टि बेटा, पक्षाब बादल जल बूंदों व हिमकण दोनों से बने होते हैं। इन बादलों की ऊंचाई धरती से 5 से लेकर 14-15 किलोमीटर तक होती है। श्वेत रंग वाले पक्षाब बादलों की संरचना समानांतर लहरों की भांति होती है। और बच्चों, आमतौर पर पंक्तिबद्ध या समूह रूप वाले पक्षाप बादल आकाश का अधिकांश भाग घेरे रहते हैं।
1: अंकल, पक्षाप बादल के और भी उपवर्ग है ना?
2: देखो मानव, पक्षाप बादलों के समूह में पक्षाप कपासी और पक्षाप स्तरी बादल आते हैं। और बच्चों, पक्षाप स्तरी बादल तो तूफान का द्योतक होते हैं।
3: तो क्या अलग अलग बादलों के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं?
2: हाँ बेटी, इस भिन्नता के कारण ही तो इनको अलग वर्ग में रखा गया है।
0: और सृष्टि, जानती हो स्तरी या स्ट्राटस बादल तो पक्षाप बादलों के नीचे स्थित होते हैं।
1: फिर तो जरूर इन्हें मध्यम स्तरीय बादलों की श्रेणी में रखा गया होगा।
2: बिल्कुल मानव, स्तरीय बादलों की ऊंचाई धरती से 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक होती है। हल्के भूरे और श्वेताब रंग के ये स्तरी बादल मूसलाधार बारिश कर सकते हैं। बरसते समय इन स्तरी बादलों का रंग गहरा भूरा हो जाता है। और कभी स्तरी बादल आकाश में धुनी हुई रुई के समान भी दिखाई देते हैं।
0: अच्छा
1: अंकल, स्तरी बादल कितने प्रकार के होते हैं?
2: देखो मानव बेटा, स्तरी बादल तीन प्रकार के होते हैं, जो मध्य कपासी, मध्य स्तरी और वर्षा स्तरी बादलों के नाम से जाने जाते हैं। और बच्चों, तीसरे वर्ग में फूल गोभी के समान दिखाई देने वाले कपासी या क्यूमुलस बादल आते हैं।
0: और मानव, जानते हो झुंड में रहने वाले इन कपासी बादलों को आकाश में ब्लैक एंड व्हाइट रंग में देखा जा सकता है।
1: क्या भैया, बादल भी श्वेत श्याम रंग के होते हैं? अभी तक तो मैंने सिर्फ श्वेत श्याम रंग का टेलीविजन ही सुना था।
2: अरे बच्चों, ये कपासी बादल ऊंचे स्थानों पर तो कोहरे का आभास देते हैं।
1: अच्छा, तो अंकल, कपासी बादल धरती के सबसे समीप बादल हुए।
2: हाँ माना बेटा, और इन बादलों को भी मुख्यतः तीन उपवर्गों में, स्तरी कपासी बादल और कपासी वर्षी बादल में बांटा गया। अच्छा। है
0: अंकल, मैंने कहीं पढ़ा है कि हिमपात और टर्नाडो की घटनाएं कपासी वर्षी बादलों से होती है।
2: विवेक, हिमपात व टोर्नेडो के साथ ही बिजली चमकने की घटना भी कपासी वर्षी बादलों से होती है।
0: अच्छा
1: अंकल, जब मैं छोटा था तो ये समझता था कि भगवान बिजली चमकाकर ये देखते हैं कि कौन कौन भीगने से बच गया है।
2: ये मानव भी।
3: अच्छा तो मानव, अब जब बिजली चमकती है तब तुम्हें क्या समझ आता है?
1: दीदी, एक दिन बिजली चमकने की सच्चाई मुझे विवेक भैया से पता चली कि बादलों से विद्युत विसर्जन से बिजली चमकती है, जो कि बादलों में उत्पन्न विपरीत आवेश के कारण होता है।
2: बिल्कुल ठीक।
0: और मानव, विद्युत का चमकना एक घटना ना होकर कई घटनाओं का एक जटिल क्रम होता है।
2: अच्छा बच्चों, तुम्हें बादलों से संबंधित अगर कोई मुहावरा याद हो तो मुझे बताओ।
1: हाँ अंकल, बादल से संबंधित मुझे एक मुहावरा याद है, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है।
2: वाह मानव वाह, वेरी गुड, यही मुहावरा तो मैं सुनना चाहता था।
3: हाँ अंकल, ऐसा क्या खास है इस मुहावरे में?
2: मुहावरे में नहीं बेटा, बल्कि मुहावरे में छिपे बादलों की गड़गड़ाहट में विशेष बात है। देखो बच्चों, गरजने वाले बादल बरसें भी ये जरूरी नहीं, और बारिश तो तभी होती है जब बादलों में पानी की बूंदों का आकार बरसने लायक हो जाए।
1: हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन ये बादल गरजते क्यों है?
2: बच्चों मैं तुम्हें बताता हूं बादलों के गरजने का राज। देखो, बादलों से विद्युत विसर्जन होने पर जब समीप की हवा बहुत अधिक गर्म होकर तेजी से चारों ओर फैलती हुई आसपास की ठंडी हवा से टकराती है, तब जो गड़गड़ाहट की आवाज उत्पन्न होती है उसे ही बादलों का गरजना कहा जाता है।
1: अच्छा, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज तो विद्युत चमक के काफी देर बाद सुनाई देती है।
0: वो इसलिए मानव कि प्रकाश की गति की तुलना में ध्वनि की गति काफी कम होती है,

0: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
1: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा

0: होता, बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
2: हाँ माँ जी।
3: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: मेहरबा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो सिंगर म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय आदित्य रेखाड़ी म्यूजिक लाविटर मेहरबा ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी। तो दादी बोलती है तू दुनिया में सबसे अलग है।
3: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं कि तू क्या चीज है।
4: से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते।

सुनो शारदा 90.8 FM भारत हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
0: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे, देख लो 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Sharmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: क्या आपको पता है जन्म के एक घंटे के अंदर नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात शिशु को बीमारियों से बचाता है।
2: जन्म के बाद नवजात बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। उसे शहद, पानी, घुट्टी या अन्य कोई पेय या खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु बीमार हो सकता है।
1: स्तनपान कराते समय मास्क तथा सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ की धुलाई जैसी कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन करना मत भूलिएगा।
2: संक्रमित माता भी अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं।
1: स्तनपान संबंधी अधिक जानकारी आप आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या नर्स दीदी से प्राप्त कर सकते हैं।
2: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
1: शिशु की सही देखभाल से फर
2: पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं, HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती, कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, RJ बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। नमस्कार आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

सुनो शारदा 90.8 FM भारत हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है

0: एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
0: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
0: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव।

0: अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
0: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना।

सुनो शारदा 90.8 FM भारत हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस अर्थात नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: द वर्ल्ड इज हियर।
2: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
3: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
2: खाने में एक चम्मच घी या तेल है जरूरी,
3: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
2: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
3: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
4: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
1: 90.8 एफएम। अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू,
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया ले के चल, अभी चल।
3: तो अभी चलो।
4: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।